0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए मशहूर एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मोगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भोरनिया के साथ अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प, साझा जिम्मेदारी। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-29 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। प्रमुख उद्योगों के सूचकांक ICI में अगस्त में वार्षिक आधार पर 4.8% की संचय वृद्धि दर्ज की गई। ये जुलाई के 5% की संशोधित वृद्धि दर से थोड़ी कम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतरिम अनुमानों के अनुसार पिछले महीने 9 प्रमुख क्षेत्रों में से 5 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। बैठक में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। कार्यालय ने कहा कि किसी मतदाता का नाम सूची से हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना और उचित आदेश जारी करना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण है। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए, जिसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। जापानी एशियाई खेलों में आज महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में गत विजेता भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। भारत ने वर्तमान में 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 12 గంటలు అవుతుంది. హిందీలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాథ్ మే కనకలత. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें जल संसाधनों को बढ़ाना और सुरक्षित करना होगा. उपराष्ट्रपति ने कहा कि खुशी की बात है कि कई देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि पानी के सही उपयोग के लिए जागरूकता जरूरी है. उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है. उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी.
2: वाटर शुड बी यूज्ड प्रीसियसली वेयर द रिक्वायरमेंट शुड बी मेट विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्वांटम ऑफ वाटर. दिस वाटर वीक सेलिब्रेशंस हैव प्रूव्ड टू बी सिग्निफिकेंट बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट्स एंड स्टेक होल्डर्स टू डेलिब्रेट ऑन द प्रोसेसिंग चैलेंजेस ऑफ water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
1: 5 din ke is aayojan ka vishay hai jalvayu anukool jal prabandhan. Jal Shakti Mantralay ke anusar 14 rajya isme bhag le rahe hain. Netherlands aur Germany saathedar desh ke roop mein isme shamil hain. निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव की घोषणा कर दी है. तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मल्लिक के इस्तीफे के कारण ये सीट रिक्त हुई है. नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी. 16 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा. आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र की 5 और कर्नाटका की 4 सीटों के लिए भी चुनाव की घोषणा की है. इन चुनावों के लिए नामांकन 29 सितंबर से शुरू होगा. 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे. स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि आधार, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आभा आईडी के जरिए भारत ने एक मजबूत और व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार की है. न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ एआई फ्रेमवर्क पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि एआई मॉडल को स्थानीय और विविध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए ताकि वे लोगों की जरूरतों के अनुरूप प्रभावी समाधान दे सकें. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी. ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं. राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए. expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने.
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग न्यूयॉर्क में कल V4+ भारत के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया. ये बैठक V4 की स्लोवाकिया की अध्यक्षता में हुई. भारत और विशेषग्राद समूह के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया. विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा और सुरक्षा, संपर्क, शिक्षा, लोगों की आवाजाही और जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई. मंत्रियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रम, शांति और सुरक्षा तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के मुद्दों पर भी विचार साझा किए. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की. बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई. एशियाई खेलों में भारत ने महिला T20 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 217 रन का लक्ष्य दिया है. इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए. स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली. इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया. ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं. घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई. सेंसेक्स 198 अंक गिरकर 74,661 पर, जबकि निफ्टी 45 अंक फिसलकर 23,369 पर पहुंच गया. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
4: This is Akashvani. The news read by Valsa Williams. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the third National Conference of Anti-Narcotics Task Force ANTF heads of states and UTs in New Delhi. The two-day conference serves as a powerful platform to safeguard future generations from the menace of drugs. Heads of ANTFs from 36 states and union territories are attending the conference being organized by the Narcotics Control Bureau, NCB. Based on the theme of the United Resolve, Shared Responsibility, the conference is focusing on progress of targets assigned to states and UTs, ANTFs, in recently released vision document on narcotics control 2026-29. During the conference, deliberations will also focus on identifying and adopting appropriate strategies to further strengthen the central government's measures for supply reduction, demand reduction, and harm reduction. Vice President C.P. Radhakrishnan today inaugurated the 9th India International Water Week 2026 in New Delhi. Addressing on the occasion, he stressed upon the precise usage of water and highlighted that it should be conserved. He underlined that Water Week is a significant platform to bring all stakeholders to deliberate upon processing challenges of water management.
5: This shows the importance of water because the population is increasing, the urbanization is increasing, we have to produce more food grains. When the urbanization increases, we need more water for cleaning, for drinking. The usage of water is increasing every day. So we all must make a clear awareness in ourselves as well as the wherever we go, the water should be used preciously.
4: Jal Shakti Minister C.R. Patil highlighted the importance of water conservation and said the government is committed in providing safe and sufficient drinking water to every citizen in the country. The theme of this year's Water Week is climate resilient water management. Marking a new chapter in Indian cinema, Preston Draupadi Murmu will present the historic 72nd National Film Awards this evening at Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honours, recognising artistic and technical excellence across various categories, namely feature, non-feature and writing on cinema. As part of a major policy initiative by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards are being held outside the national capital. The President will also honour veteran actor Anant Nag with the Dada Saheb Phalke Award for 2024. The Election Commission today announced by poll for one Rajya Sabha seat in West Bengal. The seat fell vacant due to the resignation of TMC MP Rukmini Malik. Nomination will begin on the 29th of this month and polling will be held on the 16th of October. The Commission also announced the MLC election for 11 seats in Uttar Pradesh, 8 seats in Bihar, 5 seats in Maharashtra and 4 seats in Karnataka. Nomination for the polls will begin on the 29th of this month and polling will be held on the 23rd of October. Karam Festival, a vibrant celebration of Jharkhand's rich tribal culture, nature and the bond between brothers and sisters, is being observed across the state today with traditional fervour and enthusiasm. President Draupadi Murmu extended wishes to all countrymen on the occasion of Karam Puja. Indian Eves opener Smriti Mandhana has created history as she has become the first cricketer in the world to score 11,000 runs in women's international cricket. Smriti made this record during the Asian Games final against Sri Lanka at Karogi Sports Park in Nishin. Mandhana smashed 3 sixes and 3 fours in the first 4 overs to get India off to a blistering start. She surpassed former Indian captain Mithali Raj's record of 10,868 runs. Benchmark domestic equity indices gave up their initial gains and were trading with losses in the forenoon session today. The Sensex fell 198 points to 74,661, while the Nifty dipped 45 points to 23,369 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। ममता जी आपसे एक सवाल कि आप अकेले अकेले कहाँ गई थी?
1: अरे जरा धीरे बोलिए, सब लोग सुन लेंगे, माइक भी ऑन है।
2: अरे तो बताना तो चाहिए ना सबको।
1: लेकिन हम नहीं बताना चाहते ना।
2: अरे क्यों नहीं बताना चाहते? इतने फायदे हैं उसके ममता जी।
1: नहीं नहीं नहीं बता, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीक्रेट होती हैं।
2: अच्छा?
1: लेकिन बस चलिए आपने अब खुलासा कर
2: दिया,
1: राज खुल गया है, तो हम बता देते हैं सबको कि अमूमन यही होता है, हम कुछ बातें छुपाते हैं लोगों से और खुद से भी छुपाने की कोशिश करते हैं। भला खुद कहीं छुपा पाता है कोई बात? अब हम राज खोल देते हैं। दरअसल सोलो ट्रिप पर जाने की बात है, हम कई बार अकेले अकेले चले जाते हैं तो बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि अरे अकेले जाने का प्लान बनाना मतलब ऐसे होता है कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। और घर वाले तो जैसे बताओ कि सोलो ट्रिप पर जाने का प्लान है तो घर वाले एकदम भौचक्के रह जाते हैं, अरे
2: कैसे जाओगी,
1: कैसे जाओगी, ये परेशानी वो परेशानी, दुनिया भर की परेशानियों की फहरिस्त, और अंदर अंदर उनको कुछ घबराहट भी होती है कि अभी अकेले अकेले पैर पसार रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है बिल्कुल बगावती हो जाएगी। तो ये जो महिलाओं के साथ होता है कि सोलो ट्रिप पर जाने की बात जैसी महिलाएं करती हैं वैसे ये लोग परेशान हो जाते हैं। तो बात बस इतनी सी है कि पुरुष ही नहीं महिलाएं भी सोलो ट्रिप पर जाती हैं आजकल
2: और जा रही है, और खासकर युवाओं में ये बहुत चलन हो गया है और होना चाहिए। बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है जब हम अपने पति के साथ, भाई के साथ, पिता के साथ या घर वालों के साथ जाते हैं। तो क्या होता है ना कि हम मोबाइल में या बातचीत में लगे रहते, पर
1: चक्कर में लगे रहते हैं एक दूसरे के,
2: पर जब हम अकेले जाते हैं तब हम बहुत सजग हो जाते हैं, बहुत सचेत हो जाते हैं कि हमें कैसे टिकट खरीदना है, हमें कैसे ट्रेन पकड़नी है, कैसे फ्लाइट पकड़ना है, अगर बस से जाना है तो किस स्टॉप पे हमें उतरना है, इस तरह की कई कई सारी बातें हैं। अकेले जाना है तो किस तरह से हमें होटल बुक करना है, किस तरह से हमें खाने का बंदोबस्त करना है, और ये महिलाओं को बहुत अच्छा अनुभव देता है। हर महिला को ही सीखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। नहीं तो अमूमन हमने देखा है कि बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं जो रोजगार करती हैं, बाकायदा नौकरी पेशे वाली होती हैं, लेकिन वो भी जब कहीं घूमने जाती हैं तो देखा है कि पति पिता या भाइयों पर डिपेंडेंट रहती हैं, और जहां जहां गए कई बार तो घर वाले पूछते भी कि ये कौन सी जगह, तो पता चला उन्हें कुछ मालूम ही नहीं होता उसके बारे में, कभी खोज भी नहीं करती। जब आप अकेले घूमने के लिए जाती हैं तो पहले तो बहुत रिसर्च करती हैं कि यहाँ पर कौन सी जगह है और उन जगहों का क्या इतिहास है, और उस इतिहास के बारे में जानना, इससे आपकी जानकारी भी बढ़ती है और एक ये अलौकिक सा अनुभव होता है।
2: इस विषय पर हम बातें करेंगे। हमारे श्रोताओं ने अभी तक कमेंट नहीं लिखा है कोई भी, तो हम श्रोताओं से गुजारिश करेंगे कि भाई आप लिखिए कि जाना चाहिए या जाना है तो किस तरह से हमें सावधानी भी बरतना चाहिए।
1: और साथ में सोनाली जी उन महिलाओं से भी कहेंगे कि जो सोलो ट्रिप पर जाना चाहती है लेकिन अब तक नहीं गई, उन पुरुषों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि वो भी अपनी टिप्पणी लिखे कि सोलो ट्रिप पर जाने का कैसा अनुभव रहा, अच्छा बुरा, और जो वहां पर आपने देखा क्या पाया जाना लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
2: जी साथ ही सखी विशेष में मल्लिका श्रीनिवासन जो चेयरमैन है टैफ ट्रैक्टर की, उनके बारे में हम जानकारी देंगे। और एक बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है ममता जी, हल्की फुल्की बातें, इसमें आंटी मत कहो ना, जो हर महिलाओं को इसका थोड़ा सा दुख होता है कि अपने से जब छोटी उम्र के हमें आंटी कहते हैं तब दुख होता है। अगर बच्चों ने, कॉलेज के बच्चे हैं या फिर स्कूल के बच्चे, उन्होंने कह दिया तो कुछ नहीं, जब सब्जी खरीदने जाते हैं और हमसे बहुत बड़े उम्र के जो भाई साहब होते हैं वो आंटी कहते हैं तो तब तो इतना दुख होता है कि
1: कई बार लोग अपनी उम्र को छुपाने के लिए, अपने को छोटा बनाने के लिए भी सामने वाले को आंटी कह देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो तो बहुत बड़े हैं। और वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो ये बुरा तो लगता है। तो आपके साथ मतलब श्रोताओं के साथ क्या हुआ?
2: और श्रोताओं ने ममता जी भर भर के कमेंट्स लिखे हैं इस विषय में।
1: अच्छा तो भाई ये वाला विषय हमें लगता है उन्हें ज्यादा मन भाया क्या? वो सोलो ट्रिप वाली बात जची नहीं या उनका अनुभव नहीं है? होगा तो अनुभव, शायद छुपा भी रहे होंगे,
2: शायद लिखेंगे।
1: हाँ और जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वो तो अक्सर सोलो ट्रिप पर जाना पसंद करते हैं, परिवार के साथ नहीं।
2: उन्हें अच्छा लगता है।
1: हाँ, तो आप अपने बच्चों के अनुभव भी साझा कर सकते हैं। और मुहावरों की दुनिया बहुत बड़ी है, विशाल है। तो आज का जो मुहावरा है, घर का भेदी लंका ढाए, इस पर आप सबकी क्या राय है? और हमारी तो अब ये राय है कि हम सुनवाते गाना।

0: तो ममता जी, आज हम सखी विशेष में एक प्रेरणादायी महिला उद्यमी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। वो है महिला मल्लिका श्रीनिवासन। मल्लिका श्रीनिवासन भारतीय उद्योग जगत की जानी मानी उद्यमी है और टैफ ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। और टैफ भारत के प्रमुख ट्रैक्टर और कृषि उपकरण निर्माता कंपनियों में से एक है। मल्लिका श्रीनिवासन ने विमेंस क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई से गणित में स्नातक किया, बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के वॉर्टन स्कूल से MBA किया।
1: और उन्होंने 1980 के में अपने परिवार के व्यवसाय से जुड़ गई वे और जुड़ते हुए उन्होंने टैफ में काम शुरू किया। और शुरुआत में उन्हें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास हासिल करना पड़ा क्योंकि कठिन था। उन्होंने किसानों की जरूरतों को समझा, उत्पादों में सुधार करने और तकनीक और अनुसंधान पर ध्यान देने को अपनी कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। और उन्हीं के नेतृत्व में ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों के कारोबार का विस्तार भी हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी उपस्थिति बढ़ गई। उन्होंने ट्रैक्टर इंजन और ट्रांसमिशन कारोबार के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: और मल्लिका श्रीनिवासन को उद्योग और समाज में उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्हें बिजनेस नेतृत्व और महिला उद्यमिता के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कार भी मिले हैं। और उनकी रुचि केवल उद्योग तक सीमित नहीं है। टैफ के माध्यम से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में भी आपने काम किया।
1: मल्लिका श्रीनिवासन की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कृषि जैसे पारंपरिक रूप से जो पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है, उसमें एक महिला का नेतृत्व, दूरदृष्टि और व्यावसायिक समझ ये बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुई और उनकी इस मामले में बहुत अहम भूमिका रही।
0: और ममता जी, वक्त हो चुका है ब्रेक का।
1: तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: तो सोनाली जी, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं और मल्लिका श्रीनिवासन के बारे में हमने जानकारी दी अपनी सखियों और सखाओं को। अब क्या किया जाए,
1: एक गीत सुन लिया जाए।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: भाई आपने सोनाली जी हमसे तो पूछ लिया राज की बात कि सोलो ट्रिप पर आप कहाँ गई थी, लेकिन आपने अपना नहीं बताया कि आप कहाँ गई थी सोलो ट्रिप पर पिछले दिन।
1: जी मैंने पढ़ा है, सुना है, और आपके बारे में भी पढ़ा है, और मैं भी सोच रही हूँ पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही।
0: बस यही तो बात है, हम सब हिम्मत नहीं कर पाते अकेले जाने की,
1: पर मन में बहुत इच्छा है।
0: हाँ, और होता क्या है कि आप अकेले जाते हैं तो आप वहाँ के अनुभव बटोर कर ले आते हैं।

0: हैं, वहाँ की जानकारियां बटोर कर ले आते हैं, जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं लिखते पढ़ते हैं। और हमने तो कई राइटर्स के बारे में पढ़ा है कि जो लिखने के लिए अकेले कहीं गए, जैसे मन्नू भंडारी का जो उपन्यास है आपका बंटी, तो मैंने उनके बारे में पढ़ा था कि वो पहाड़ों पर गई थी वो पूरा करने के लिए उपन्यास। तो जो लिखने पढ़ने वाले बहुत सारे फिल्मी दुनिया में लोग हैं जो लिखते हैं, राइटर्स हैं, वो लोग कहीं चले जाते हैं, वहां लिखकर स्क्रिप्ट लिखकर लौटते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है अकेले जाने में?
1: बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि हर महिला को ये अनुभव लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम परिवार के साथ जाते हैं तो ये जो खासकर महिलाएं उसी उलझनों में लगी होती है कि बच्चों को नहलाना है, उन्हें कपड़े चेंज करवाना है, उन्हें खाना खिलाना है, खाना खाते खाते भी पहले बच्चों को खिलाना है फिर खाना है। पर एक उम्र के बाद में जब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए, 40 के बाद महिलाओं को ये अनुभव जरूर लेना चाहिए। बहुत सुंदर अनुभव होता है कि बहुत कुछ हम सीखते हैं, और सबसे जरूरी बात है ममता जी कि हम खुद के लिए जीते हैं।
0: बिल्कुल,
1: नहीं तो हर बार महिला ऐसा होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए ही जीती है।
0: मन से आप प्रसन्न होती हैं। आपने कहा महिलाओं को जाना चाहिए, क्या पुरुषों को नहीं जाना चाहिए?
1: पुरुष तो जाते ही ममता जी।
0: बिल्कुल, भले ही महिलाएं अमूमन नहीं जाते, डरती रहती है, तो इसलिए जाना जरूरी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एकल यात्रा सोलो ट्रिप का बढ़ता चलन, भाई ऐसी यात्राएं तो हमारे यायावरता की निशानी है, और ये यात्राएं सुखद भी होती हैं क्योंकि इसमें पाथेय का बोझ अल्प ही रहता है, फिर यदि पद यात्रा पर है तो देशाटन का लुत्फ भी आसानी से उठाया जा सकता है। ऐसी यात्राओं के बहुतेरे शौकीन हैं, बहुत सारे लोग तो सिर्फ अकेले जाना ही पसंद करते हैं, और अभी तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो आप अपने घर से तो अकेली निकलती हैं,
1: वहां महिलाओं मिल जाता है,
0: बाकायदा ग्रुप मिलता है तो वो साथ हो जाता है, लेकिन वहां पर ये जो परेशानियां आपने बताई ना कि कपड़े पहनाना है, खाना खिलाना है, वो झंझट नहीं होते हैं, तो आप उसको उस ट्रिप को बाकायदा एंजॉय कर सकते हैं।
1: यानी बच्चे भी आत्मनिर्भर बनते हैं और महिलाएं भी अपने लिए जीती हैं।
0: बिल्कुल,
1: एक साथी ने कहा वाले तो गांव खेड़ा का सफर करते हैं, उन्हें आके बताया जाता

इतना डर डर के कौन जीता है, फिर तो कहीं भी रिस्क है। आप घर से निकलते हैं तो आपका कोई भरोसा नहीं होता कि कब कौन सा हादसा हो जाए। तो अपने मन को डर से मुक्त कीजिए और फिलहाल एक गाना सुनिए।

0: ये आशीर्वाद दे देना चाहिए जो लोग आंटी कह के इस तरह छोटे बनना चाहते हैं, यही तरीका है। और कुछ लोग बुरा मान जाते हैं और कि वहां पर कई बार तो झगड़ा भी हो जाता है कि अरे मुझे आंटी कैसे कहा, ये देखो
1: मेरे बाल इतने काले हैं, मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और मुझे कहा आपको मैं कहां से आंटी लग रही हूँ।
0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि आंटी कहो वाला सेगमेंट तो बहुत मजेदार है, मेरी एक छात्रा की बातें है कह रही थी। वो बोली कि मैम कल हम लोग फिल्म के टिकट के लिए लाइन में खड़े थे और एक हम उम्र लड़का आकर बोला

0: कहने को कहो, भाभी जी हमसे जमता नहीं, जो बड़ी औरतें हैं आपस में कहना भला। इन्हें इन्होंने ऐसा लिखा है कि हमारी मम्मी ने भी मना करके रखा है।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि मैं रहने वाला तो बुंदेलखंड का हूँ और वहां पर आंटी शब्द का जो उदाहरण है वो अचूक है। जगह जगह की अपनी अपनी परंपरा होती है, लेकिन हाँ मैं ग्वालियर में राजमिस्त्री का काम करता हूँ। जो हमारी श्रीमती जी हैं वो भी हमारे साथ लेबर का कार्य करती हैं। इत्तेफाक से अगर किसी ने उनको आंटी बोल दिया तो लड़ाई हो जाती है निश्चित रूप से, क्योंकि अभी वो हालत, वो 40 साल की हो चुकी है लेकिन आंटी किसी के मुंह से सुनना नहीं चाहती। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि आप छोटों से भी आंटी शब्द नहीं कहलवाना चाहते। एक छोटी सी टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि आंटी शब्द कोई अपने से छोटा बोल दे तो अच्छा भी लगता है, पर कई बार बराबरी और बड़े बोल दे तो कभी हम उनको देखते हैं कभी अपने आप को देखते हैं।
0: एक सखी ने लिखा है, आंटी शब्द से तो न जाने कितने ही मजाकिया किससे खुद से और दूसरों से जुड़े हैं। एक बार प्राइवेट बस के कंडक्टर ने मुझे कहा, आंटी थोड़ा सा आगे हो जाओ। मैंने कहा, मैं तुझे आंटी दिख रही हूँ? मैंने कहा, तुम लोगों ने दो ही शब्द सीखे, अंकल और आंटी, तो बेचारा यूं ही आगे निकल गया, बस किराया भी नहीं लिया। 15-20 साल पहले की बात है, अब तो कोई बोल दे तो चलता है।
1: जी बिल्कुल।
0: एक साखी ने लिखा है कि जैसा कि आप सबको पता है कि आंटी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में चाची, मामी, बुआ, फूफी, ताई, इन सबको आंटी ही कहा जाता है। आंटी का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि कोई काफी उम्र का हो चुका है। मामी, बुआ, फूफी, ताई, चाची किसी भी उम्र की हो सकती है। हाँ, मगर आंटी शब्द का चलन फैशन इस कदर बढ़ गया है कि अपने उम्र से कम उम्र के लोगों को भी लोग आंटी कहकर पुकारने लगते हैं। फिर भी अगर कोई जाने अनजाने कोई किसी को आंटी कह दे तो उसे बिल्कुल भी दिल से ना लगाए, उल्टा आंटी कहकर पुकारने वालों का हंस कर मुस्कुरा कर स्वागत करे, ना कि बुरा माने।
1: कुछ इसी तरह की बात इन्होंने भी लिखी है कि आजकल किसी नई उम्र की लड़की को कोई बोल देता है तो बहुत ही बवाल हो जा रहा है, पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि आंटी मतलब सिर्फ चाची ही नहीं होता, मौसी बुआ भी तो होता है। तो मान लो कि तुम उसकी मौसी हो, बुआ हो, और बुद्ध क्या उम्र ना होते हुए भी, मतलब छोटी उम्र ना होते हुए भी कुछ सामाजिक चलन है जिसमें अपने से छोटे को बड़ा समझदार कह दिया जाता है। गांव में आज भी आपसे बड़े उम्र के लोग भी माताजी कहते हैं, संबोधन देते हैं। माताजी कहने का मतलब ये नहीं कि हम उम्र दराज हो गए, हमें वहाँ माँ के समान इज्जत दे रहे हैं। हाँ, कुछ जगहों पर तो छोटी बहन को भी दीदी कहा जाता है, और कुछ शहरों में जो स्कूल है, कुछ स्कूल में भी, विद्यालय में भी छोटों को दीदी भैया कहा जाता है, मतलब चाहे वो लड़के बड़े हों चाहे छोटे हों, उनको और दीदी कहा जाता है।
0: वही दीदी, तो ताई, भैया कहे, इस तरह से कहे ना तो बुरा नहीं लगता, पर एकदम से सडनली कोई आंटी बोल दे तो फिर थोड़ा सा महिलाओं को बुरा लगता है।
1: भाभी कहने में भी कोई बुरा नहीं मानता है, जबकि कई बार बहुत बड़े उम्र के लोग आपको भाभी कहते हैं तो वो अच्छा लगता है, फिर आंटी कहने में क्यों बुरा लगता है।
0: एक साथी ने लिखा है कि अगर वयस्क महिला को आंटी बोल दिया जाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें अभी से उम्र दराज दिखने का या महसूस करने का एक प्रयास जैसा प्रतीत हो रहा है, मतलब बुरा लगता है। उनके मुकाबले उसी उम्र के पुरुष को अगर अंकल कहा जाता है तब उसे जरा भी बुरा नहीं लगता। इस बारे में क्या कहेंगे?
1: बिल्कुल। अब ये हमारे श्रोताओं के विचार हैं और हम तो बस आनंदित हो रहे हैं आपकी टिप्पणियां पढ़ पढ़ के। एक श्रोता ने लिखा है कि आंटी मत कहो, सुनने में भले ही एक छोटी सी बात लगे लेकिन इसमें उम्र और रिश्तों को लेकर हमारी सोच छिपी है। किसी को केवल उम्र के आधार पर संबोधित करने के बजाय उसके नाम या सम्मानजनक संबोधन का प्रयोग करना अधिक सहज लगता है। शब्दों में अपनापन और सम्मान हो तो रिश्तों में भी मिठास बनी रहती है, इसीलिए संबोधन वही अच्छा है जिसमें सामने वाला व्यक्ति सहज और सम्मानित महसूस करे।
0: एक साथी ने कहा है, मुझे भी ऐतराज है, कोई हमारा हम उम्र का भी हमें आंटी कहने लगे। हाँ, हम आंटी उम्र के हो गए हैं, पर टीनेजर्स के ना कि अंकल आंटी वाले उम्र के लोग हमें कहे।
1: अब एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो समझ में नहीं आता किसी महिला को आंटी कह देने से इतना बुरा क्यों लग जाता है। आखिर ये तो उम्र और रिश्ते के लिहाज से संबोधन का एक सामान्य शब्द है, पर शायद जब किसी महिला को आंटी कहा जाता है तो उसे लगता है कि सामने वाला उसे उम्र दराज समझ रहा है। तो उम्र को छुपाने से बेहतर है उसे मुस्कुराकर स्वीकार करना, क्योंकि खूबसूरती उम्र में नहीं व्यक्तित्व और व्यवहार में बसती है। भाई ये बात तो पुरुषों के लिए भी लागू होती है ना, कि कई बार पुरुषों को जब अंकल कह दिया जाता है बहुत कम उम्र के लोगों को, तो वो भी तो ये ऐतराज करते हैं
0: अंकल कहाँ दिख रहा है।
1: और खास तौर से जब आप पत्नी की सहेलियां जब आती हैं।

0: और वो अंकल कह देती हैं।
1: हाँ, तो
0: कहते नजर आते हैं लोग कि अरे तुम्हारी सहेलियां तो हमें अंकल कहती हैं। तो बात तो वही हो गई। अब आज विषय आंटी का रखा गया, अगली बार अंकल वाला शब्द रख दिया जाएगा। फिलहाल एक गाना सुनवा दे।

0: खफा खफा से
1: हाय मर जाऊं।
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा।

0: अब ये आंटी ना कहो के बारे में तो भाई बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। हमारी एक सखी लिख रही है कि बेंगलोर में सभी महिलाओं को अम्मा कहा जाता है। मैं जब पहली बार वहाँ गई तो हर ऑटो वाला कोई दुकानदार अम्मा कह देता था, बड़ा बुरा लगता था।
1: एक साथी कहते कि मेरी लेडीज कलर की शॉप है, मैं भी कभी किसी को आंटी कहता हूँ तो उनका मुंह थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। आंटी का अर्थ चाची, काकी, बुआ जी, मामी, यही तो होता है ना।
0: बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या होता है सोनाली जी, कई बार हमें पता नहीं होता है कि किस रिश्ते से कहा जा रहा है। मैं भी जब मुंबई नई नई आई थी तो एक बार सब्जी खरीदने गई और वहां पर सब्जी वालियों ने मुझे कहा कि ताई, मराठी में बोला ताई ये गया, तो मैंने कहा अरे, तब मुझे बिल्कुल मराठी बिल्कुल नहीं आती थी, तो ताई बोला तो मुझे बड़ा अचरज हुआ कि मैं ताई ताई मतलब तो क्या होता है, बड़ी माँ। हम उत्तर प्रदेश या एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में ताई मतलब
1: चाची
0: मतलब बड़ी माँ, एक तरह से मतलब जो चाची है,
1: माँ की जेठानी।
0: हाँ, माँ की जेठानी हुई। तो मैं सोच रही थी कि ताई किस रिश्ते से कहा, और बड़ी दिखने का सवाल तो बाद में आया, पहले ये लगा कि किस रिश्ते से ताई कह रही है। तो एक ने कहा, दो ने, फिर दो तीन बार ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैंने एक बार पूछा, मतलब मुझे भी बुरा लगा, हमने कहा ये ताई किस रिश्ते से कह रही, मेरा आपका क्या नाता है। तो उसने बताया ताई मतलब दीदी। तो दीदी भी एक तरह से मतलब छोटी थी, मैं तो बहुत छोटी थी जब आई थी, तो उस समय ये अजीब सा लगता है, बुरा लगने की बात तो बाद में आती रिश्ते। तो ये जो अम्मा वाली बात है कि किसी ने कोई सीधे आपको अम्मा जी कह दे तो कैसा लगेगा, तो सोच समझ के कहना भी चाहिए। और
1: लोग अंकल कह देते तो मुझे बुरा नहीं लगता है।
0: एक श्रोता लिख रहे हैं कि आजकल मैं सफर में रोडवेज में जाता हूँ तो कंडक्टर मुझे कभी कभी अंकल कह देते हैं, पर मैं तो बुरा नहीं मानता हूँ, पर फिर सोचता हूँ कि उम्र भी अब इस तरह की हो गई है। तो फिर हमारे एक पड़ोसी, एक अगले श्रोता ने लिखा है, हमारी सखी है, हमारी एक पड़ोसी है जो अपनी पत्नी को मजाक में आंटी कहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि 10 साल पहले ट्रेन में एक सज्जन ने मुझे माताजी कहकर संबोधित किया, मैं अवाक रह गई, मुझसे उम्र में बड़ा था, आज ये बात याद आ गई मुझे। ये तो मेरी वाली बात कि जो सब्जी वालियों ने कहा था वो सब हमसे बहुत उम्र में दो गुना तीन गुना उम्र की रही होंगी, और उन्होंने मुझे ताई कहा था, और मैं एकदम से परेशान हो गई कि ताई किस रिश्ते से कहा।
1: वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि मैं अपनी पत्नी को आंटी कहता हूँ। तो इसमें तो ये कहावत हुई ना कि घर का भेदी लंका डाए। कि एक ये जो हमने मुहावरा लिया है इसमें आज का मुहावरा है घर का भेदी लंका डाए, इसका अर्थ घर का कोई सदस्य घर के राज दूसरों को बता देता है तो घर में परेशानियां शुरू हो जाती है। बड़े बुजुर्ग कहा करते कि दीवारों के भी कान होते हैं, इस तरह समझाया करते थे, पर आजकल हर सभी लोग जागरूक हो गए हैं, खुद अपने घर के भेद किसी को बताते नहीं है, खुद दूसरों के भेद जानने में लगे रहते हैं।
0: अब तो एक गूगल नाम का जो प्राणी है आपके सारे भेद खोल देता है, तो इसलिए आपको बहुत सजग रहना चाहिए। कई बार आपने गूगल से एक आध बार कोई एक चीज सर्च कर ली तो बार बार बार बार उसी के मैसेज आते हैं, वही चीज आपको, वही ब्रांड, वही चीज, वही वस्तु दिखाई दे।
1: मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी हमारे मन का भी जान लेता है।
0: बिल्कुल,
1: मन में कभी सोचा है तो उसी के आने लगती है।
0: क्योंकि जब हम कोई विमर्श कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो उस बीच कभी भी आपने मोबाइल यूज किया तो वो बात चली जाती है,
1: शब्द पकड़ लिया तो उसी के आती। एक और
0: कई बार अलेक्सा अगर आपके घर में है और आपने कोई शब्द ऐसे बोला और मुंह से अ ल निकला एक साथ तो अलेक्सा तुरंत बोल पड़ती है। तो ये जो हो गया है ना कि अब टेक्नोलॉजी के साथ घर का भेदी लंका ढाए वाला मुहावरा अब इस तरह से भी बदल गया है कि आप जो भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, घर का भेदी लंका ढाए बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है और इस दृष्टिकोण से केवल विभीषण के चरित्र को भली भांति याद किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप ही रावण का वध हो गया। भाई अजब तेरी दुनिया, गजब तेरी कारीगरी रे, सरकार जो समाज में ऐसे लोगों की उपस्थिति ही मिल जाया करती है।
0: अब एक गाना सुने
1: सुनते हैं।

0: नया दौर फिल्म का ये गाना था और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतिया या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार, सेल्यूलॉइड के सितारे। श्रोताओ, हमारे आज के इस प्रोग्राम के सेल्यूलॉइड के सितारे हैं टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन। आपसे बातचीत की है नीता वाजपेयी ने।
1: दोस्तों, हम हाजिर हैं लेकर खास आपके लिए आपका अपना प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से करवाने जा रहे हैं जो जितने अच्छे एक्टर हैं, शायद उससे भी ज्यादा अच्छे एक राइटर हैं, और उससे भी ज्यादा अच्छे वे एक डायरेक्टर हैं। आप हैं आदरणीय श्री अनंत महादेवन जी। नमस्कार और स्वागत है विविध भारती के हमारे स्टूडियोज में।
2: नमस्कार, और विविध भारती के सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपने मुझे इतना अच्छा बना दिया कि अब मुझे उस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। कृपया मुझे जरा धरती पर ही रहने दीजिए और बातचीत शुरू करते हैं।
1: कोशिश तो हम भी करेंगे। ये पूछने के लिए सबसे पहले आपसे कि टेलीविजन और फिल्म से जुड़ने के लिए आपने सपना देखा था, और वो सपने को सच करने के लिए आपने क्या संघर्ष और कितना संघर्ष किया था?
2: आपके जहन में कैसे आई कि मैंने सपना देखा था? लेकिन वाकई मैंने एक सपना देखा था, और जिस वक्त मैं सपना देख रहा था बचपन में, मुझे शायद लगा नहीं कि यह सपना सच होगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगर आप सपने देखते हैं और देखते रहते हैं और उस पर काम करते हैं उन सपनों में, तो वो सपने वाकई साकार होते हैं। जैसे बचपन में मुझे याद है, जहां मैं रहता था कुछ ही कोसों दूर एक बिल्डिंग में, शायद विनोद खन्ना और शशि कपूर जी की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो मैंने अपने दोस्त से एक बहुत ही पावरफुल बाइनोक्यूलर्स लिए, और उस बाइनोक्यूलर के थ्रू मैं वो शूटिंग देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया। और उस रात को मैंने एक सपना देखा कि मैं एक शूटिंग में हूं, मैं परफॉर्म कर रहा हूं। सुबह जब उठा तो वो सपना एकदम सुबह के किरणों में खो गया था, लेकिन उस वक्त से मैंने सपना देखना शुरू किया था कि मुझे एक एक्टर बनना है, मुझे एक एंटरटेनर बनना है, मुझे लोगों को एंटरटेन करना है। और शायद तभी से स्कूल के जमाने से, कॉलेज में जितने प्लेज किए हैं, इंटर स्कूल इंटर कॉलेजिएट थिएटर कॉम्पिटिशन्स में भाग लिए हैं, तब से ये सपना आहिस्ता आहिस्ता साकार होने लगा। और अब भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरी तरह से साकार हुआ है, लेकिन वो स्ट्रगल जारी है, और अब भी मैं सपना देखता हूँ कि एक दिन जाके ये पूरी तरह साकार हो और मैं पूरी तरह एक एक्टर बनूँ, पूरी तरह एक राइटर या डायरेक्टर बनूँ, और उतना अच्छा बनूं जितना आपने मुझे बताया है।
1: आपने अभी भी कहा कि आपने थिएटर किया है, तो पहले तो शौक ही आप करते थे, और उसके बाद
2: जी हाँ, बिकॉज थिएटर जो है, जो वो सबसे आसान माध्यम है परफॉर्मर के लिए, क्योंकि वहां ना आपको किसी के पास जाना पड़ता है, ना किसी के ऑफिस में जाने की जरूरत है और रोल मांगने की जरूरत है। आप खुद ही एक वन मैन शो कर सकते हैं, और ये वन मैन या वन चाइल्ड शो मैंने शुरू किया था स्कूल के जमाने से। जब हम किंडरगार्टन में थे तो 2-3 ब्लॉक्स पर मैं खड़ा हो गया, जो मेरा प्लेटफॉर्म था, और बच्चों को कहानियां सुनाने लगा, और ऐसी कहानियां सुनाने लगा जो मुझे खुद एक आश्चर्य हुआ कि ये मेरे दिमाग में कहां से आई। और वहीं से ये एक जर्नी जैसा शुरू हुआ, ये जर्नी जो जिसके बीचों बीच में हूं इस वक्त, और इसकी मंजिल बहुत दूर है। थिएटर से टेलीविजन, टेलीविजन से फिल्म्स, इन तीनों का संगम मैं जोड़ कर रखने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभी मैं थिएटर भी करूं, जो मेरे रूट्स हैं, टेलीविजन जो थिएटर और फिल्मों के बीच में है, और फिल्म जो है जो लार्जर देन लाइफ है, बहुत बड़े पर्दे पर जो हम निभाते हैं, तो इन तीनों का एक गंगा जमुना सरस्वती जैसा संगम है, और उस संगम के बीचों बीच में हूँ इस वक्त।
1: वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। आजकल जो आप कर रहे हैं उसके बीच में आपको थिएटर के लिए तो काफी कम समय मिल पाता होगा।
2: अफसोस, मैं चाहूंगा कि मैं और थिएटर करूं, वक्त निकालूं। ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं है, अगर आदमी वक्त निकालना चाहता है तो किसी भी चीज के लिए वक्त मिल जाता है, लेकिन मैं वक्त निकाल नहीं पा रहा हूं इस वक्त, वो मेरी कमजोरी है। और मैं चाहूंगा कि अगले साल मैं एक अच्छा प्रोडक्शन करूं, एक और प्ले करूं। मैंने अब तक करीबन 30 प्रोडक्शंस किए हैं।

0: कुछ 3,000 परफॉर्मेंसेस किए हैं और मैं चाहूँगा कि इसको आगे बढ़ाऊँ और एक और प्रोडक्शन करूँ. मैं बस इसी के इंतज़ार में हूँ कि एक अच्छी स्क्रिप्ट मिले मुझे और वहीं से मैं एक और प्रोडक्शन की शुरुआत करूँ.
1: अनंत जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हिंदी रंगमंच का क्या भविष्य है. हम देखते हैं बम्बई में खास तौर पर मराठी, अंग्रेजी और गुजराती रंगमंच को दर्शक ज्यादा अहमियत देते हैं. हिंदी रंगमंच थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पिछले बैक सीट ले रहा है, ऐसा क्यों है?
0: ये बहुत सही बात कही आपने. हिंदी में अगर आप, मैं संक्षेप में बताऊं तो लेखक बहुत कम हैं. कितने प्लेज हैं जो ओरिजिनल हिंदी प्लेज कह सकते हैं आप? ये जितने प्रोडक्शंस मैंने किए हैं उसमें ज्यादातर बादल सरकार के प्लेज थे, विजय तेंदुलकर के प्लेज थे, आर्थर मिलर के अडेप्टेड प्लेज थे, शेक्सपियर के प्लेज थे. हिंदी में शायद मैंने सिर्फ मोहन राकेश का प्ले किया. मुझे हिंदी लेखकों के नाम भी याद नहीं जितने हैं, मतलब बहुत सारे हैं जो अच्छे प्लेज लिखते हैं, तो एक मोहन राकेश को हम चुन सकते हैं, गिन सकते हैं उसमें. बाकी सब अडेप्टेड प्लेज हैं. और जहाँ तक गुजराती और मराठी प्लेज का सवाल है, वहाँ भी वो कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं. हिंदी में चूंकि हमारे पास टेलीविजन है, हिंदी फिल्में हैं, तो बहुत सारे ऑडियंसेस हिंदी प्लेज नहीं देखना चाहते हैं, अफसोस. लेकिन मराठी जो प्लेज हैं और गुजराती प्लेज जो रीजनल थिएटर है, वो ज्यादातर फॉरेन फिल्म से या फॉरेन प्ले से ही अडेप्टेशन हैं. अगर आप उसमें झांक के देखे तो कि ओरिजिनल कहाँ से आए, फिर भी वो चलते हैं क्योंकि वो एक कमर्शियल लेवल पर किया गया है. जैसे अंग्रेजी प्लेज हैं, जो इंग्लिश प्लेज यहाँ चलते हैं, वो भी हिंदी से कहीं बेहतर चलते हैं. वो सब प्रोसीनियम थिएटर में होते हैं. हिंदी प्लेज ज्यादातर हमको एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर में ही करना पड़ता है. जैसे बम्बई में पृथ्वी और NCPA है, या श्रीराम सेंटर है दिल्ली में, या भोपाल में अपनी रेपर्टरी है. उसके अलावा कहाँ आपकी हिम्मत नहीं होती किसी प्रोसीनियम थिएटर में जाके हिंदी प्ले करने की, क्योंकि वहाँ 19-20 लोग बैठे रहते हैं. हमने एक प्ले किया था आला अफसर, जो इंस्पेक्टर गोगोल के इंस्पेक्टर जनरल पर आधारित था, एक नौटंकी, पृथ्वी थिएटर में किया हमने. पूरा म्यूजिकल स्टाइल में था, 300 लोग थे, 200 अंदर 100 बाहर. तो हमने सोचा कि शायद हम ये प्ले एक बड़े मंच पे ले जाएं, प्रोसीनियम पे ले जाएं, भाईदास में ले गए और वहां सिर्फ 200 लोग थे और पूरा थिएटर खाली था. सो आप सोच सकते हैं कि कितने लिमिटेशंस हैं हिंदी थिएटर के लिए, जिसके बावजूद कुछ लोग हिंदी थिएटर से जुटे हुए हैं. और ये बहुत अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले. गवर्नमेंट से भी ग्रांट्स मिलते हैं और हिंदी थिएटर को जिंदा रखने के लिए पूरी कोशिश रहेगी.
1: चलिए अभी एक और कोशिश करते हैं. आगे बढ़ने से पहले आपके पसंद का गीत हम सुनने वालों को सुनाना चाहेंगे.
0: जी हाँ, मैं चाहूँगा कि सुनने वाले भी कुछ ब्रेक ले मेरी इस बकबक से और एक मैं खामोशी से बैठा रहूं और वो खामोशी का ये गाना

0: आनंद जी, इतना खूबसूरत सा गीत आपने हमारे सुनने वालों को सुनाया। अब बहुत सी और बातें हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे सुनने वाले जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे इस मोड पर ये जानना चाहूंगी कि आपने एक बहुत ही अविस्मरणीय भूमिका अदा की थी टेलीविजन सीरियल टीपू सुल्तान, और भूमिका थी पूर्णैया। तो इस तरह की ऐतिहासिक भूमिका करने के लिए, जो जिसके हर श्रोता के, हर दर्शकों के दिलो दिमाग में छा जाती है, आपकी क्या तैयारी रहती है?
1: पूरी तैयारी थी, यहाँ तक कि मौत से लड़ने की भी तैयारी थी क्योंकि जिस वक्त हम पूर्णैया पंडित, रोल ऑफ अ लाइफ टाइम है, टीपू सुल्तान, द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान सीरियल बन रही है, चले हम मैसूर प्रीमियर स्टूडियोज में और उस शाम को तकरीबन 9 बजे कुछ दोस्तों के साथ जब मैं गेट से बाहर गया, वापस आया तो लाशों की ढेर थी वहां, आग लग गई थी। और उन यादों को लेकर हम बंबई आए। शायद ये सीरियल कभी नहीं बन पाएगा ये सोच के बाद में अकबर खान ने फिर से इस सीरियल को शुरू किया। और हम कर भी क्या सकते थे, एक सीरियल बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि कम से कम उन लोगों की याद में जिनकी जाने चली गई उस फायर में, उस आग में। तो हम जयपुर गए फिर, और जयपुर में एक बार फिर जुट गए इस सीरियल पर। और तब एक एहसास हुआ कि ये रोल कितना इम्पोर्टेंट है। और सीरियल खत्म होने के बाद ये एहसास हुआ कि ऐसे रोल्स
0: बार बार नहीं आते
1: और ऐसे कैरेक्टर्स बार बार नहीं आते, क्योंकि पूर्णैया जो है शायद एक ही किरदार है उस पूरे सीरियल में जो टीपू के वालिद के साथ, ये एक चाणक्य जैसा कैरेक्टर बन के रह गया था। तो शायद एक वक्त में वो टीपू से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया था उस सीरियल में। तो ये करने में बहुत ही चैलेंजिंग था। हमने काफी बुक्स पढ़े पूर्णैया के बारे में, कभी स्केचेस देखे, नहीं देख पाए कि वो चलता कैसा है, बोलता कैसा है, क्योंकि ज्यादातर ऐतिहासिक किरदारों के साथ यही प्रॉब्लम है कि उनकी जिंदगी की बहुत सारे लम्हे हमारे पास नहीं है। तो हम उसको कैसे निभाएंगे, कैसे बोला होगा इस आदमी ने, कैसे खड़ा होगा इस आदमी, कैसे कुछ बात, हाथ के जेस्चर्स कैसे किया होगा। तो जितना हम सच के पास जा सकते थे उतना हमने कोशिश की उसमें, पता नहीं हमने सही की या गलत, लेकिन जो रिस्पॉन्स था ऑडियंस उसका, तो हो सकता है हमने तकरीबन ठीक ही किया होगा। और टीपू की बहुत यादें हैं, उस सीरियल की बहुत यादें हैं, और इस वक्त मैं संजय खान की हिम्मत की दाद देना चाहूंगा कि जो आदमी उस आग से गुजरकर टीपू सुल्तान बनकर एक जिंदगी की लड़ाई लड़ी, उस आदमी को मैं बहुत बहुत सल्यूट करना चाहूंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। आनंद जी, आपने टेलीविजन सीरियल के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया, छोटे पर्दे और बड़े पर्दे का एक समन्वय आपने बनाए रखा
1: जी।
0: तो क्या ये दो

0: दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या फिर इनमें बहुत अंतर होता है काम करने के तरीके में?
1: हाँ, अंतर मैं कहूंगा, एक एक उदाहरण देता हूं आपको।
0: जी
1: अगर आप कहेंगे कि फिल्म जो है वो लार्जर देन लाइफ है, जिंदगी से बड़ी है, टेलीविजन जो है स्मॉलर देन लाइफ है, जिंदगी से छोटी है,
0: अच्छा,
1: और थिएटर जो है वो लाइफ लाइक है।
0: बहुत खूबसूरत बात है।
1: फिल्म जो है हमको बड़ा चढ़ा के ही बताना पड़ता है, क्योंकि जो पर्दा है वो 70 mm स्क्रीन जो है, जिस वक्त आप अपने आप को देखते हैं और इतने बड़े लगते हैं आप स्क्रीन पर, तो आपको लगता है कि आप जिंदगी से बहुत बड़े हो गए हैं। उसमें जो सिचुएशंस हैं जिंदगी से बड़े हैं। टेलीविजन पे हमें मौका मिलता है थिएटर के पास पास रहने की, जो किरदार है बहुत ही रियल हैं, जिंदगी के करीब हैं, फिल्मों के करीब नहीं, तो वहां एक्सपेरिमेंट करने का मौका हमें बहुत मिलता है। फिल्मों में कैरेक्टर्स जो हैं बहुत, कम से कम हमारे हिंदी फिल्मों में, बहुत दुख होता है ये कहते हुए, लेकिन बहुत कंट्राइव्ड होते हैं, बहुत फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं, मास ओरिएंटेड होते हैं। वहां कुछ चीजें, कुछ लाइनें इतनी फेमस हो गई कि आपको उसी तरह से बोलना है। आपको रोना है तो बहुत फूट फूट के रोना है।
0: अच्छा।
1: आपकी आंखें अगर नम हो गई हो तो वो रोना नहीं कहते, तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या एक्टिंग है, इन्होंने कुछ एक्टिंग ही नहीं की है। तो वहां कुछ जरूरतें हैं जो आपको पूरी करनी है। टेलीविजन पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थिएटर में और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसीलिए जो रियल सेटिस्फैक्शन जो कहते हैं वो आपको थिएटर में मिलता है, थोड़ा बहुत टेलीविजन से, लेकिन फिल्मों में आपको जो पॉपुलैरिटी हासिल होती है वो शायद टेलीविजन और थिएटर से नहीं होता है। तो हर एक क्षेत्र में अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं, जो आपको उस तरह से आपको अपने आप को उसमें ढालना होता
0: फिल्में तो आपने खैर की हैं, बाजीगर, खिलाड़ी, चांदनी, अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत, या तो कहें कि क्वांटम में, वॉल्यूम में आपने बहुत ज्यादा नहीं की हैं। आपको क्या आपने मन माफिक किरदार नहीं मिले हैं, रोल नहीं मिले हैं, या आप उसमें अपनी लिमिटेशंस की, नहीं मैं थोड़ी ही फिल्में करूंगा?
1: क्योंकि दोनों बातें सही हैं। मैं जिस तरह के रोल्स चाहता हूँ शायद मुझे नहीं मिले, जिस तरह के रोल्स मैं थिएटर और टेलीविजन में कर चुका हूँ उस तरह के रोल्स नहीं मिले। ये अमूमन लोगों, फिल्म के डायरेक्टरों की आदत है कि आप टेलीविजन के अच्छे एक्टर्स को लेके वहाँ एक छोटे से रोल में ले लो, वहाँ खड़ा कर दो, क्योंकि एक छोटे से रोल में भी परफॉर्मेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैंने कुछ अच्छी फिल्में की। गर्दिश एक बहुत अच्छी फिल्म थी, प्रियदर्शन की फिल्म थी वो। अब्बास मस्तान के साथ मेरा एक बहुत अच्छा संबंध है, इसीलिए बाजीगर, बादशाह और खिलाड़ी जैसे फिल्में की मैंने उनके साथ। और खिलाड़ी में उन्होंने ये हिम्मत भी की, अनंत महादेवन जैसे एक बहुत ही साधारण चेहरा, एक किरदार को लेके उन्होंने मेन विलन बनाया। तो ऐसे दिलेर डायरेक्टरों की जरूरत है, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स की जरूरत है जिसमें फिल्मों में काम करने का मजा भी आए, तब तक मुझे इस तरह चुन चुन के ही काम करना पड़ेगा।
0: वो विलन का रोल करते हुए आपको मजा आया होगा, या आपको लगा रहे मैं कहाँ फंस गया? अच्छा।
1: नहीं, फंसे तो वो थे ना जो दूसरे कैरेक्टर्स थे। मजा तो बहुत आया, क्योंकि विलन की जो साइकी है, जो उसके मन में आप अगर घुस के देखें, उनके दिमाग में अगर आप घुस के देखें, तो आपको वाकई उस पर काम करना पड़ता है। क्योंकि मैं रियल लाइफ में विलन नहीं हूं अगर मैं ये बात कह सकता हूं, लेकिन विलन्स के जो थिंकिंग है, जो उनकी जो सोच है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो अगर उस पर आपको काम करना है और बहुत ही साधारण आदमी बन के आप विलन हैं एंड में, तो आपको क्या करना होगा, उसमें काम करने का बहुत मजा आया।
0: चलिए, आगे भी हम मजा लूट रहे हैं एक गीत के साथ।
1: हाँ, बारिश का मौसम तो नहीं है, लेकिन एक गाना है बारिश पर, जो मंजिल फिल्म का है, रिमझिम गिरे सावन, वो गीत मैं सुनने वालों को सुनाता
0: वाह, बहुत खूबसूरत गीत है।

0: अनंत जी, अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप डायरेक्टर, एक्टर और राइटर तीनों हैं, तो इन तीनों विधाओं में से अगर आपको कोई भी एक चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे?
1: ये तो बहुत मुश्किल सवाल किया आपने। मैं तो डायरेक्शन, एक्टिंग और राइटिंग को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। बहुत सिंपल है ये बात। अगर आप अपने आप को देखेंगे, आपका जो सर है, जो सोच है, दिमाग है, उसे मैं डायरेक्टर मानता हूं। आपका जो फिजिक है, बॉडी है, उसे आप एक्टर मानिए, और आपके हाथ जो है वो लेखक है, लिखते हैं, वो राइटर मानिए। तो आप अपने हाथ, बॉडी और सर को एक दूसरे से अलग तो नहीं कर सकते ना।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने।
1: हाँ, अगर आप सीधी तरह इसका जवाब चाहती हैं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर रोल बहुत अच्छा है तो मैं जरूर एक्टिंग करना चाहूंगा। अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लिखना भी चाहते हैं और जो जिस तरह से आप उसको बनाना भी चाहते हैं, जिसमें डायरेक्टर बनना बहुत जरूरी है कि राइट फ्रॉम पेन टू पियानो जो है, राइटिंग से लेके एडिटिंग और पूरी तरह से आपको काम करना है। कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिस पर आप डायरेक्टर का रोल निभाना चाहेंगे, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें सिर्फ आप एक्टिंग करना चाहेंगे। उस हिसाब से मैं चुन लेता हूँ और उस हिसाब से मैं अपने आप को या तो एक्टर पाता हूँ या डायरेक्टर पाता हूँ।
0: अनंत जी, आपको अपना सबसे पहला शॉट निर्देशक के रूप में, जब आपने लाइट्स, कैमरा, एक्शन और डायरेक्टर्स कट जिसे कहते हैं, कहा था, आपको याद है?
1: जी हाँ, वो घड़ी तो कोई भी डायरेक्टर नहीं भूल सकता। एक टेलीफिल्म मैंने बनाई थी, इसका नाम था संबंध। ये उन दिनों में मैंने बनाई थी जब ये पंजाब में काफी हंगामा हो रहा था, और मेरी खुशकिस्मती थी कि जो स्क्रिप्ट उस फिल्म की थी वो डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखी थी। कहानी है जो पंजाब से भागकर दिल्ली आ जाता है, उसकी फैक्ट्री सब कुछ शिफ्ट हो जाता है दिल्ली, और उसकी जो फैमिली है, परिवार है, वो उनसे कहते हैं कि हम आपकी फैक्ट्री नहीं है, हमारी जो रूट्स हैं यहाँ पंजाब में हैं और हम यहीं रहेंगे। और राय साहब ने एक बहुत खूबसूरत डायलॉग लिखा था उसमें कि ये आदमी फिर जाग जाता है और कहता है कि ठीक है, उनकी गोलियां हैं और हमारी छातियां हैं, देखते हैं किस में ज्यादा दम है। और मैंने कहा, राय साहब, ये तो बहुत ही डेंजरस डायलॉग है, ये तो कट जाएगा। नहीं बेटा, आप करो ना इसको आप। और वाकई वो जो टेलीफिल्म थी वो इतनी अप्रिशिएट की गई। बस उसमें एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग था। जिस वक्त ये चल रहा था, ये प्रॉब्लम, पंजाब का प्रॉब्लम चल रहा था, उस वक्त शायद लोगों को लगा कि ये जो फिल्म है वो एक फेरी टेल एंडिंग है, यूटोपियन एंडिंग है, ये कभी हो नहीं सकता, ये जो हैप्पी एंडिंग आपने दिया। और आज मैं खुश हूं कि जो एंडिंग है वो एकदम फ्यूचरिस्टिक एंडिंग था, और इस वक्त पंजाब इज एब्सोल्युटली पीसफुल। तो दिल्ली में वो जो हमने ये टेलीफिल्म बनाई, उस वक्त एक लॉन पे मैंने एक शॉट लिया था जब उसके जो मेन किरदार चाय और कॉफी लेके बाहर आते हैं और एक कैरेक्टर से मिलते हैं, और तभी मैंने शायद पहली बार एक्शन और कट कहा। तो दिल्ली से शुरू हुई वो कहानी और अब बम्बई में है हम।
0: अच्छा, सीरियल और टेलीफिल्म बनाते समय आप दर्शकों का जो टेस्ट है वो ध्यान में रखते हैं, या फिर अपने प्रोड्यूसर का नजरिया ध्यान में रखते हैं, या खुद की जो थिंकिंग है, एक सोच है, उसको पर्दे पर लाने की कोशिश करते हैं?
1: खुद की थिंकिंग और सोच तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ दूसरों के टेस्ट के हिसाब से जाएंगे तो फिर आप जो चाहते हैं वो बना नहीं पाएंगे। लेकिन ये भी साथ साथ बहुत जरूरी है कि जो आप सोचते हैं, जो आप बनाते हैं, वो एक ऑडियंस के लिए बनाएं।
2: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं टेलीविजन और फिल्मों के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की ये बातचीत।
1: आप यहां इस देश में रहकर ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो ऑडियंस के सोच के ऊपर हो। तो आपको थोड़ा सा कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और मैं वहां तक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कि आप में लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर एकदम ऐसे कुछ चीज बनाओ जो मेरी पसंद का नहीं हो, मेरे टेस्ट का नहीं हो, और साथ साथ वो भी नहीं बनाओ जो ऑडियंस को समझ में आए। तो कहीं बीच में एक बैलेंस यहाँ मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो फिल्म मेकर्स जैसे बिमल रॉय थे, बासु चैटर्जी साहब, ऋषिकेश मुखर्जी जिनके साथ मैं एक शायद फिल्म करूंगा अभी उनके साथ साथ, ये दोनों टेस्ट को दिमाग और मन में रख के उनकी जो फिल्म थी जो मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा हम कहते थे, जो बहुत हेल्दी होलसम एंटरटेनमेंट ये लोग बनाते थे, ये ऐसी फिल्में बनाना बहुत जरूरी है, ऐसे सब्जेक्ट्स बनाना बहुत जरूरी है जो ऑडियंस को भी पसंद आए और आपको भी ऐसा न लगे कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया।
0: जी, कौन सी सीरियल थी जिसे आपको लगा कि आपने सभी चीजों को एक समान रूप से अहमियत दी है?
1: एक सीरियल घर जमाई मैंने बनाया था।
0: जी,
1: घर जमाई में एक साउथ इंडियन जो दामाद है वो पंजाब के एक पंजाबी घर में एक लड़की के साथ उनकी शादी हो जाती है, और ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स हैं उस पर हमने बनाई थी सीरियल, और इसमें बहुत मजा आया क्योंकि इसमें एक नेशनल इंटीग्रेशन जैसा था कि पंजाब नॉर्थ और साउथ को मिक्स करके जो टेस्ट से कुछ लोग कुछ टेस्ट के खिलाफ हैं, जैसे पंजाबी जो है वो डोसा नहीं खाना चाहते हैं और जो साउथ इंडियन है वो ढाबे में नहीं जाना चाहता है। तो ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स हैं, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे देश में, उसमें काम करने का बहुत मजा आया, और वहां मुझे लगा कि मैं वाकई एक ऑडियंस को रीच आउट कर रहा हूँ और हमारे ऑडियंसेस जो हैं इस तरह की बातें पसंद भी करते हैं। तो घर जमाई में बहुत मजा आया, और भी काफी सीरियल्स थे लेकिन शायद इसमें जो मजा आया वो दूसरों में नहीं।
0: चलिए अब आगे बढ़े, उससे पहले सुनते हैं आपके पसंद का एक और गाना।
1: ये कोहरा का गाना है, ये नयन डरे डरे हेमंदा का गाया हुआ।
0: वाह।
3: नयन डरे डरे

0: आनंद जी, अभी थोड़ी देर पहले गीत सुनने से पहले आपने अपनी सीरियल, कॉमेडी सीरियल घर जमाई की बात कही। इस वक्त आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और अमूमन आम आदमी अगर आपको देखे तो आप बहुत ही सीरियस और एक इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान नजर आते हैं। क्या आपके नेचर में है, आपके स्वभाव में है सीरियसपन, कि आपने ये ऑपोजिट कैसे हो गया है कि आपने एक कॉमेडी सीरियल, अभी हाल फिलहाल की सीरियल है आपकी अलविदा डार्लिंग जो बहुत ही मशहूर हो रही है।
1: जी हाँ, पता नहीं, वो कहते हैं ना कि जो आदमी शायद अंदर से उदास है वो हंसता ज्यादा है, वो ज्यादा मजाक करता है वो आदमी, शायद उसे बाहर निकालने के लिए एक एस्केप रूट चाहिए। आदमी सीरियस होता है वो शायद सबसे बढ़िया कॉमेडी वही कर सकता है। चैपलिन की फिल्में अगर आप देखेंगी, उसके जो किरदार हैं सीरियस होते थे, वो ट्रेजिक थे वो सारे कैरेक्टर्स, वहां के जो कैरेक्टर्स थे उसने आपको सबसे ज्यादा हंसाया। तो कॉमेडी हमेशा ट्रेजेडी में छुपी हुई, ऐसा मेरा कहना है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सोशल सीरियल आपको बनाने का मौका मिले तो आपको वो ज्यादा आसान लगेगा या कॉमेडी ज्यादा आसान लगेगी?
1: नहीं, मुझे सोशल सीरियल्स बहुत ही आसान लगते हैं, उसमें सिर्फ रोना है और सब रोते हैं आपके साथ। लेकिन जब आप कॉमेडी सीरियल बनाते हैं, अगर आप हंसते हैं, ये जरूरी नहीं कि दूसरे भी आपके साथ हंसे, क्योंकि जो आपके लिए लतीफा हो दूसरों के लिए लतीफा होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप रोते हैं तो सब रोते हैं आपके साथ। तो सोशल सीरियल बनाना बहुत ही आसान है, कॉमेडी सीरियल बनाना बहुत मुश्किल है,
0: बहुत मुश्किल है। इसी तरह मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको डायरेक्शन ज्यादा आसान लगता है या फिर एक्टिंग, आराम से जाए सेट पर मेकअप लगाए और शुरू हो जाए एक्टिंग करना?
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: या फिर पूरी जिम्मेदारी बोझ पर?
1: डायरेक्शन के बाद मुझे तो एक्टिंग एक पिकनिक लगता है कि आप जाएं, अपने लाइंस बोले और घर जाएं। आपको ये फिक्र नहीं है कि एक्टर सेट पे टाइम पे आया है, आपने अपना शॉट लिया है, आप ये एपिसोड या फिल्म कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, रिलीज होंगे, क्या होगा इसका।
0: हाँ हाँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल आसान, हमेशा एक्टर का काम बहुत आसान होता है।
0: अच्छा ये बताइए कि फिल्मों में, फिल्मों की तरह हमारी सीरियल्स में संगीत को इतना महत्व, गीत और संगीत को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि हमारी भारत की संस्कृति ही गीत और संगीत पर चलती है, ऐसा क्यों है?
1: नहीं, जितना महत्व हम फिल्मों में संगीत को देते हैं वो कुछ ज्यादा ही है, तो ज्यादा को कम करने के लिए हम सीरियल्स में नहीं करते हैं। जितना महत्व देना है वो फिल्म में हमको दिखाई देता है, फिल्म में मजा आता है, और जहां हमको एक गाना होता है वहां छह गाने मिलते हैं, तो हम टेलीविजन पे क्यों करें, टेलीविजन को फिल्म क्यों बनाए हम
0: जी?
1: इसलिए जो है वो सही है और वैसे ही रहने दीजिए, वरना आपको हर सीरियल में छह छह गाने मिलेंगे और उठ के जाएंगे आप, टेलीविजन बंद कर देंगे।
0: इसीलिए क्या टेलीविजन के सिर्फ टाइटल सॉन्ग पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि टाइटल सॉन्ग बेस्ट, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ?
1: जी हाँ, टाइटल सॉन्ग से उस सब्जेक्ट का एक मूड भी बनता है, और जिस तरह से फॉर्मूला फिल्म्स में है वो फॉर्मूला हम टेलीविजन में नहीं रखते हैं। टेलीविजन में कहानियां होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो हीरोइन नहीं होते हैं, वो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जो टेलीविजन का फॉर्मेट ही अलग है। और वो बिल्कुल सही है कि आप टेलीविजन को फिल्म की तरह ना करें, टेलीविजन को टेलीविजन की तरह करें।
0: अच्छा, आजकल एक चैनलों की एक बाढ़ सी आ गई है, जिसे देखो हर कोई जो जिनके पास पैसे हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने अपने चैनल्स खोलें। तो क्या इतने सारे चैनलों के आने की वजह से दर्शकों को हम अच्छा मनोरंजन दे पाएंगे, या फिर जो हम परोसेंगे दर्शक वही ले लेंगे?
1: एक जमाना था जब हमारे पास सिर्फ दूरदर्शन था, और जो दूरदर्शन ने परोसा वो हमने लिया, लेकिन उसका फायदा यह भी था कि जो भी हमने दूरदर्शन में किया वो लोगों ने देखा और हमें फीडबैक मिला। अब इस वक्त इतने चैनल्स हो गए हैं कि हमें सिर्फ हमारा काम करना पड़ता है, हमें ये उम्मीद नहीं रखनी है कि हमारे सीरियल्स लोग देखेंगे और हमें उसका फीडबैक मिलेगा, अच्छा बुरा जो भी है। लेकिन ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा फायदा हुआ है कि उनको चॉइस बहुत मिल गया है। अगर इस वक्त आप बहुत ही बेहतरीन चीज नहीं बनाएंगे तो ऑडियंस उस चीज को नहीं देखेगी, फिर ऑडियंस के पास चॉइस है, उसके पास रिमोट है, वो चैनल स्विच करेंगे, जो अच्छे सीरियल्स उनको अच्छा लगेगा वो देखेंगे, जो अगर आपका 19 भी हो तो ऑडियंस वो सीरियल नहीं देखेगी। तो इस वक्त कंपटीशन बढ़ गया है, एक तरह से क्वालिटी में बहुत फर्क आया है, और अब लोग चाहते हैं कि क्वालिटी कॉन्शियस हो और अच्छे सीरियल्स बने, क्योंकि 100 चैनल्स में से आपको ऑडियंस का, ऑडियंस की जो अटेंशन है आपकी तरफ डाइवर्ट करना है, तो आपका काम बहुत मुश्किल हो गया है. और एक तरह से सीरियल्स के लिए अच्छा भी है क्योंकि क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं वो.
0: बिल्कुल बिल्कुल. चलिए इस मुद्दे पर हम थोड़ा सा आगे और बातें करते हैं, उससे पहले सुनते हैं आपके पसंद का गाना.
1: अभी अभी हम हंसने की बात कर रहे थे और ट्रेजेडी में जो कॉमेडी छुपी हुई है, तो वो गाना याद आया मुझे कि हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है, आविष्कार फिल्म से.

0: आनंद जी, ये तो बातें हो गई हमारी टेलीविजन की, टेलीविजन से जुड़े उन पर देखी जाने वाले सीरियल्स की. हम इस वक्त बैठे हैं विविध भारती के स्टूडियो में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो का भी आज के दिनों में, आज के युग में, इस समय जब बहुत ही तेज भागती हुई जिंदगी हो गई है, इसकी कितनी अहमियत या इम्पोर्टेंस रह गई है? आपने जब हम बात कर रहे थे कहा था कि आप बड़े हुए ही हैं विविध भारती पर गीत सुनते हुए.
1: जी हाँ, ये क्या है, एक दौर आता है हर बार, जब थिएटर के बाद फिल्में आईं, तो फिल्मों की पॉपुलैरिटी से थिएटर आहिस्ता आहिस्ता, थिएटर बंद होने लगा, फिल्में पॉपुलर होने लगे. फिल्मों के बाद जब वीडियो आया तो फिल्में देखने कोई नहीं गए, सब घर पे बैठ के वीडियो देख रहे थे. वीडियो के बाद जब डीवीडी आए तो वीडियो चला गया, वीडियो पार्लर्स बंद हो गया, सब डीवीडी के पास चले गए. लेकिन इस वक्त जिस तरह की फिल्में बनती हैं, वो फिल्में सिर्फ थिएटर में देखा जाता है. जिस तरह के प्लेज होते हैं, नाटक होते हैं, वो थिएटर में लोग जाकर देखते हैं. और मैं जिस तरह के जो पेपर्स, न्यूज़पेपर्स जो हैं, अखबारें जो हैं, जो वो डर रहे थे कि जो न्यूज़ टेलीविजन पे आएंगे तो अखबार बंद हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ. अखबार अपनी जगह पे है, टेलीविजन अपनी जगह पे है, और रेडियो जो है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, रेडियो भी अपनी जगह है. हमें शायद लगता है कि टेलीविजन के आने से रेडियो कम लोग सुनते हैं और रेडियो का महत्व जो है जो अब नहीं रहा. नहीं, वो सही बात नहीं है. रेडियो का भी महत्व है, इसीलिए आप और हम यहाँ बैठे हैं,
0: बिल्कुल
1: हमारे सुनने वालों से बात कर रहे हैं. और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे, क्योंकि बचपन से जो हम सुनते आए हैं रेडियो, उस रेडियो को हम इस तरह टुकड़ा तो नहीं सकते.
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा.
1: रेडियो के साथ रहेंगे और रेडियो के बहुत पास रहेंगे.
0: बिल्कुल, इस वक्त हमारे श्रोता भी पास आ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि आप उनको अगला गीत सुनाएं.
1: ठहरिए ठहरिए, जरा होश में जो आऊं. नहीं, मेरा मतलब है, हा? कि ठहरिए, होश में आऊं, गाना है.
0: ओह अच्छा, बहुत खूबसूरत.

0: आनंद जी, हम इतनी देर से आपसे बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हमें, हमारे सुनने वालों को बता रहे हैं। मैं तब से बहुत ही बेचैन हूँ, बेकरार हूँ ये जानने के लिए कि आपकी मातृभाषा तो दक्षिण भारत के, मतलब आप रहने वाले हैं
1: जी,
0: तो जाहिर है आप दक्षिण भारतीय भाषा ही बोलते होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है?
1: किसने कहा आपसे कि मेरी हिंदी अच्छी है? अब आप ये इंटरव्यू एक बार प्लेबैक करके देखिए, कितनी गलतियां आपको मिलेगी और सिर्फ मैं जानता हूँ। नहीं, ये हिंदी थिएटर की देन है
0: जी।
1: मैं बंबई में रह के हिंदी थिएटर किया, और जब स्कूल में, जब हमारे थर्ड स्टैंडर्ड पे जब हिंदी एक सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया, मैंने हिंदी को बहुत सीरियसली लिया। ऐसा नहीं कि सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे उसे डिसमिस नहीं किया, उसे बहुत सीरियसली लिया। और शायद इसी की वजह से मैं आज ये जितना भी साफ बोल लेता हूँ मैं बोल सकता हूँ, और हिंदी थिएटर की वजह से, और मैं हिंदी थिएटर के बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसकी वजह से मेरी हिंदी कुछ ठीक ठाक है।
0: अच्छा, आप जब आप काम नहीं करते, एक्टिंग नहीं करते, डायरेक्शन नहीं करते, या फिर कुछ लिखते नहीं है, आप क्या करते हैं?
1: संगीत में
0: रुचि है,
1: बहुत रुचि है। संगीत, कुछ गाने गुनगुना लेता हूँ, गाने सुनता हूँ, फिल्में बहुत देखता हूँ मैं, क्योंकि वो मेरा फील्ड है तो देखना बहुत जरूरी है, एक एकेडमिक इंटरेस्ट है फिल्में देखना। और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश फिल्में नहीं, दुनिया के सारे फिल्में देखता हूँ, जैसे इटालियन फिल्में देखता हूँ, पोलिश फिल्में देखता हूँ, चेकोस्लोवाकियन फिल्में देखता हूँ, हंगेरियन फिल्में देखता हूँ, क्योंकि वहाँ की जो फिल्में हैं वो जिंदगी से ज्यादा जुड़ी हुई है। हिंदी और अमेरिकन फिल्म्स जो हैं वो एक फॉर्मूला ओरिएंटेड फिल्म्स हैं, लेकिन जो सही फिल्में हैं, जो ये कॉन्टिनेंटल फिल्म जो कहते हैं हम, वो फिल्म बहुत सच है उन फिल्मों में। तो फिल्में देखता हूँ, गुनगुना लेता हूँ, गार्डनिंग का बहुत शौक है, पेड़ पौधों से, तो जानवरों से बहुत प्यार है, तो इन चीजों में मन लगा रहता है।
0: अच्छा, और आगे की आपकी भविष्य की

0: क्या योजना है, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका, कि आप क्या करना चाहेंगे, किस तरह की फिल्में या टेलीविजन सीरियल बनाना चाहेंगे?
1: ड्रीम्स तो बहुत हैं, हमने जहाँ से शुरुआत की थी सपनों से ही शुरू की थी तो सपने अभी बहुत हैं। मैं बड़े पर्दे के लिए फीचर फिल्म बनाना चाहता हूँ और ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ जो यादगार रहे, जो लोग कहें कि या वाह क्या मजा आया, या तो ये कहें कि वाकई दिल को छू गए। तो ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ, बहुत ही सेंसिटिव फिल्में बनाना चाहता हूँ। तो ये एक सपना है जो मैं साकार करना चाहूंगा कि एक कुछ ऐसी फिल्में बनाएं जो बहुत ही यादगार रहे।
0: आनंद जी, हम चाहेंगे, हम सिर्फ हम ही नहीं, हमारे सुनने वाले भी चाहेंगे कि आपका ये सपना सच हो और उन तक आपके द्वारा बनाई हुई बेहतर फिल्म, बेहतर धारावाहिक उन तक पहुंचे। इसी आशा के साथ मैं आपका विविध भारती के स्टूडियोज में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूं। और चलते चलते आपने जो शौक की बात कही थी, हमारे श्रोता आपके उस शौक को आप ही की आवाज में सुनना चाहेंगे, यानी कि आप गुनगुना कर उनको एक गाना सुना दीजिए।
1: अब ये तो बहुत नाइंसाफी होगी हमारे श्रोताओं पर कि मैं यहाँ गाना शुरू करूं, फिर भी अगर आप इंसिस्ट कर रही हैं तो ऐसे ही एक गाना गुनगुना देता हूँ।

0: बहुत खूबसूरत अलन जी, एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया यहाँ आकर। मैं उम्मीद रखूंगा कि श्रोताओं को भी उतना ही मजा आया। थैंक यू वेरी मच,
0: धन्यवाद।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की ये बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोगी थे रमेश गोखले। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स OTT, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस समय राष्ट्रपति राष्ट्रीय फिल्म समारोह को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: एक बार फिर सभी पुरस्कृत फिल्मों से जुड़े लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। समाज और राष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर बनी फिल्मों का चयन करने के लिए मैं जूरी के सदस्यों की सराहना करती हूँ। मैं चाहूंगी कि प्रत्येक रीजनल जूरी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे आज जितने कलाकार पुरस्कृत किया गया है कलाकारों को, उनमें से बहुत सारे महिलाएं हैं, इसलिए जूरी भी महिलाएं होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करने हैं करके ही समग्र मानवीय दृष्टि का निर्माण संभव होता है। देवी और सजनों, आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान की सराहना की। उन्होंने 2024 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता अनंत नाग को भी बधाई दी और फिल्म जगत में 5 दशकों से अधिक के उनके योगदान की सराहना की। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
3: जब G20 हुआ था भारत में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में कोने कोने में, हर राज्य में, हर एक यूनियन टेरिटरी में, मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वाज एन एग्जांपल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आर कंट्री कैन बी शोकेस टू द वर्ल्ड।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। सरकार ने कहा है कि यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR पर GST से छोटे व्यापारियों पर बोझ नहीं पड़ेगा और न ही डिजिटल भुगतान महंगे होंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसी रिपोर्ट को गलत बताया है। NPCI ने कहा कि MDR केवल 2000 रूपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर लागू होता है। NPCI ने कहा कि 2000 रूपये तक के व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर MDR शून्य है और इसलिए GST का कोई प्रभाव नहीं है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP के जापानी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। LDP के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के महानिदेशक तारो कोनो प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री तारो कोनो पहले जापान के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और डिजिटल मंत्री रह चुके हैं। प्रतिनिधिमंडल भारत जापान विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत 5 दिन के भारत दौरे पर है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत ने जापान को हराकर पदक सुनिश्चित किया, जबकि महिला टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। सेमीफाइनल में कल भारत का सामना चीन और कोरिया के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। वहीं महिला क्रिकेट में भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, खेल मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने क्रिकेट टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu presented the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Gujarat today. The ceremony honored outstanding cinematic achievements for the year 2024. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honors, recognizing artistic and technical excellence across various categories. Veteran Kannada actor Anand Nag received the prestigious Dadasaheb Phalke Award for the year 2024. Article 370 received the Best Feature Film Award, while Yami Gautam was honored with the Best Actress Award for a role in the film. Mammootty and Karthik Aaryan jointly received the Best Actor Award for Brahma Yogam and Chandu Champion. Rajkumar Periyasamy received the Best Direction Award for Amaran, while Kalki 28988AD was honored as the Best Popular Film, providing wholesome entertainment. Randeep Hooda received the Best Debut Director Award for Swatantrata Veer Savarkar. We now take you live to the National Awards Ceremony, where President Murmu is addressing the gathering.

0: कदम उठाने का आह्वान किया। कहा सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसका उद्देश्य देश भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले दो दिन के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और विश्व की स्टार खिलाड़ी रोशिबीना देवी से भारत को और पदक मिलने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारत की फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं। उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: रचनात्मक उद्योग से अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने फिल्म ज्यूरी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: प्रभावशाली फिल्म हस्तियों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर और हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन न करके युवाओं के लिए सकारात्मक आदर्श बनने की सलाह दी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश भर के फिल्म जगत के कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को 5 दशकों से अधिक के अपने अभिनय क्षेत्र के शानदार योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगी रेड्डी की साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का खिताब जीता। तमिल फिल्म अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ट्रॉफी प्रदान की गई। वही तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथाकारों ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का सम्मान हासिल किया। अभिनय की श्रेणी में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से मलयालम फिल्म ब्रह्मोगम के लिए दिग्गज अभिनेता मम्मूटी और चंदू चैंपियन फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को प्रदान किया गया। यामी गौतम ने आर्टिकल 370 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। संजय मिश्रा ने भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब हासिल किया, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार संयुक्त रूप से महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिख्या के लिए रूपाश्री वरकड़ी को मिला। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। वहीं निर्देशक आनंद एल राय को उनकी रचना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। सिनेमा पर लेखन श्रेणी में संजीव श्रीवास्तव ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के

0: योगदान को सराहा। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
1: जब G20 हुआ था भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में कोने कोने में हर राज्य में हर एक यूनियन टेरिटरी में मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वाज एन एग्जांपल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री कैन बी शोकेस टू द वर्ल्ड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्धता वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता तब तक दुनिया उसके दावों पर विश्वास नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश और विश्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके मादक पदार्थों पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आज एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2029 का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि 2029 तक सरकार भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से उखाड़ने में सामूहिक रूप से सफल होगी। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नशा मुक्त भारत का रोड मैप अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई में भारत लक्ष्य, समय सीमा और जवाबदेही निर्धारित करके पूर्ण विजय की ओर अग्रसर है। दो दिवसीय सम्मेलन भावी पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थों के नियंत्रण संगठनों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार मिला रही है।
3: गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम, जिसकी शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी, वह आज देश में सरकारी खरीद के लिए एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। यह प्लेटफॉर्म खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाता है। 2023 में टेक्नोलॉजी के जरिए ईज ऑफ लिविंग पर बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कैसे जैम पोर्टल ने छोटे कारोबारियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सशक्त बनाया है।
4: हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज जैम पोर्टल GEM जैम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने बताया कि जैम का कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है।
5: इसने जो एक्सेस दिया है, डेमोक्रेटाइज किया है, पूरे खरीदारी को, एक तो वो कहीं नहीं है, पर आंकड़ों में अगर देखें तो 122 करोड़ की शुरुआत थी हमारे 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं।
3: जेम प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं की संख्या लगभग 3000 से बढ़कर 25 लाख से ज्यादा हो गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अन्य विक्रेताओं की बढ़ती भागीदारी के साथ जेम पूरे देश में डिजिटल सरकारी खरीद का प्रमुख मंच बनकर उभरा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के बाद सरकार का लक्ष्य देश में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। अगले चरण में करीब 4 करोड़ यात्रियों को उड़ान योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री नायडू ने कहा कि विमानन क्षेत्र में रोजगार 2014 में करीब 30 लाख से बढ़कर अब लगभग 77 लाख हो गया है। वर्ष 2040 तक इसके 2.5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मांधना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। उधर रोशिबिना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम विश्व क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मेनसिंग को 5-0 से शिकस्त दी। भारत 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, मनुटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। और केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu presents 72nd National Film Awards for year 2024 at Ekta Nagar in Gujarat. Honors veteran Kannada actor Anant Nag with Dada Saheb Phalke Award. Yami Gautam, Kartik Aryan and Mamuti received Best Actor Awards. India condemns Pakistani airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Slams Islamabad for threatening regional peace and security. Home Minister Amit Shah calls for strong and decisive action against narcotics, says government will uproot drug trade from India by 2029.

0: ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: भारत की प्राचीन और परंपरागत चिकित्सा और उपचार पद्धति को पूरी देश दुनिया में प्रसारित करने के मकसद से हर वर्ष 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। और बीते वर्षों में सरकार की बड़ी सफलता रही है कि विश्व स्तर पर आयुर्वेद जिस तरह से प्रसारित हुआ है उसमें भारत सरकार ने जो पहल की है और मंत्रालय ने जो पहल की है उस वजह से अब पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पद्धति

0: अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, स्वस्थ अच्छा जिंदगी हम वहां पर जीना चाहते हैं, तो अभी से आयुर्वेद और आयुष को, योगा को अपनाइए। तो ये साल की हमारी थीम है और इसका जो आयोजन है हमारा 23 सितंबर का, ये सब महाराष्ट्र में इसको मना रहे हैं और लगभग 150 से ज्यादा देश ये आयुर्वेदा दे 23 सितंबर को मनाते हैं।
1: मुखी जी, आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि बीते वर्षों में आयुर्वेद को साइंटिफिक एविडेंस या वैज्ञानिक आधार दिलाने में या साक्ष्य का आधार दिलाने में सरकार ने बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, कुछ इस पर आप प्रकाश डालना चाहिए।
0: बिल्कुल, आयुर्वेद ने जो वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित पहचान आयुष को, आयुर्वेदा को दिलाने के लिए आयुष मंत्रालय ने WHO के साथ मिलकर जामनगर में ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर स्थापित किया है। 2023 से इसके ऊपर काम चल रहा है और 23 से लेकर आज तक WHO के साथ में हमने 2 ग्लोबल समिट भी वहां पर किए हैं कि वहां पर दुनिया भर से बहुत सारे कंट्रीज के लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। पिछले साल दिसंबर में जो ग्लोबल समिट हुआ था उसमें लगभग 127 कंट्रीज से लोगों ने उसको सहभागी हुए थे और लगभग 27 मंत्री लेवल के डेलीगेशन भी उसमें आए थे। तो उसके माध्यम से हमने ग्लोबल पहचान साक्ष्य के आधारित देने के लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे आज पूरे देश में 12,500 आयुष के आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हमारे हैं और अच्छे तरह से भी वहां पर फुटबॉल है, लोग वहां पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं ले रहे हैं और आयुष रिसर्च पोर्टल पर भी हमने 43,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर वहां पर हमने अभी तक प्रसारित किए हैं और एम्स के साथ इंटीग्रेटिव रिसर्च ने आयुर्वेद को वैश्विक वैज्ञानिक मान्यता दिलाने के लिए भी बहुत काम हमने अभी तक कर चुके हैं।
1: निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार का जो एक दृष्टिकोण है वन नेशन वन हेल्थ, इसके तहत देखा गया है कि जो गांव में स्थानीय स्तर पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उससे लेकर बड़े अस्पतालों पर अब आयुर्वेदिक जो पद्धति है उसको पूरी तरह से अपनाया जा रहा है, तो किस तरह से पूरे देश भर में स्वास्थ्य लाभ की बड़ी पद्धति के रूप में ये उभरी है और लोगों को इसका लाभ मिला है।
0: देखिए, हमारा जो एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य के माध्यम से लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देते, मॉडर्न मेडिसिन और आयुष के माध्यम से देते हैं, तो आज प्राथमिक स्तर पर जो है रूरल एरिया में हमारे मैंने 12,500 आयुष्मान आरोग्य मंदिर वहां पर आयुर्वेदिक और आयुष के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। करोड़ों लोगों को सस्ता और सुलभ उपचार वहां पर मिल रहा है और आयुष को मुख्य धारा स्वास्थ्य प्रणाली में जोड़ने के लिए रोकथाम और उपचार दोनों वहां पर सशक्त हुए हैं। आयुष उपचार को आयुष्मान योजना के साथ जोड़ने पर भी हमारा विचार किया जा रहा है। आज हम देखते हैं कि जैसे हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर तो है, उसके साथ सभी लगभग PSC, CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इतना ही नहीं एम्स तक सभी जगहों पर आयुष के विभाग खोले गए हैं और वहां पर हमारे आयुष के डॉक्टर बैठकर आयुष के माध्यम से भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं।
1: अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आयुर्वेद की दवाइयां हैं या पद्धति है उसको लेकर एक इंटरनेशनल

0: फार्मा कोपिया मानक और आयुष वर्टिकल पर 50 से अधिक लैब स्टेटिंग को अनिवार्य हमने किया है। आयुष मार्ग को भी हम बढ़ावा दिया जा रहा है और इससे आज 150 से अधिक देशों में भारतीय आयुर्वेदिक उत्पादों पर दुनिया का भरोसा कई गुना बढ़ा है। हमारा एक्सपोर्ट भी लगभग 9 से 10 गुना तक इस 12 साल में बढ़ चुका है।
1: भारत ने अपने जो पारंपरिक ज्ञान और रिसर्च को लेकर जो नए कदम उठाए हैं तो उसको कितना प्रोत्साहन दिया जा रहा है सरकार की ओर से, मंत्रालय की ओर से, शोध के आधार पर रिसर्च को लेकर?
0: देखो, रिसर्च के बारे में तो मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है और रिसर्च सुरक्षा से हमने युवा शोधकर्ताओं को भी उससे जोड़ने का काम किया है। TKDL यानी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से 4 लाख से अधिक फार्मूले को पेटेंट होने से हमने उनको अभी तक बचाए हैं। ग्लोबल लेवल पे जो भी हमारा काम चल रहा है उसमें आयुर्वेद स्टार्टअप्स के लिए भी हमने 1,000 करोड़ तक इंक्यूबेशन फंड शुरू किया है। आयुष रिसर्च पोर्टल पर भी पारंपरिक ज्ञान के शोधों को पूरी दुनिया में प्रसारित किया जा रहा है और इससे हमारे युवाओं में शोध, नवाचार और आत्मनिर्भरता का भी एक

0: जोश आया है। सरकार की मंत्रालय की हेल इंडिया पहल या जो मेडिकल टूरिज्म की पहल है, इसमें आयुर्वेद को किस तरह से प्राथमिकता मिल रही है, कैसे भारत एक बड़ा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है इस फील्ड में?
1: देखिए, भारत का जो मैंने पहले ही बताया कि वेल्यू ट्रैवल, आयुष वीजा और निर्यात प्रोत्साहन परिषद के जरिए हम आयुर्वेद उत्पादकों को ग्लोबल ब्रांड उनको हम बना रहे हैं। हमारा लक्ष्य 2030 तक आयुष के बाजार को 23 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर दो गुना करने का लक्ष्य भी हमने रखा है।
0: हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से अब जो चिकित्सा की पढ़ाई है उसमें जो एक आयोग का भी गठन किया गया है, और उससे कैसे अब जो युवा है वो आयुर्वेद को एक करियर के तौर पर अपना रहे हैं, और कैसे इससे आगे आने वाले समय में एक बड़ी संभावनाएं खुलेंगी जो आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में सामने आएंगे।
1: देखिए, हमारे मंत्रालय के अंदर ही हमने NCISM का गठन वहां पर किया है। अभी हम लगभग 750 आयुर्वेद कॉलेज में पाठ्यक्रमों को आधुनिक और रोजगारोन्मुख उसमें बनाया गया है। नीट के माध्यम से पारदर्शी प्रवेश सुनिश्चित हुआ है। इससे युवाओं के लिए शिक्षण, अनुसंधान, वेलनेस टूरिज्म और वैश्विक प्रैक्टिस में हजारों नए करियर के द्वार खुले गए।
0: प्रधानमंत्री जी का मंत्री जी जैसे कि विजन है कि घर घर तक जो पारंपरिक आहार है वो पहुंचे, तो उसमें आयुष मंत्रालय या हमारा आयुर्वेद किस तरह से एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, जिससे कि हमारी स्वस्थ जीवन शैली में जो पारंपरिक आहार है उसकी गुणवत्ता है वो ज्यादा से ज्यादा शामिल हो?
1: अभी जो हम देखते हैं कि जो अभी हमारे देश में या पूरी दुनिया में जो गैर संचारी रोग या बीमारियां जो बढ़ रही है, उसका मेन कारण जो है कि खान पान और हमारे लोगों की दिनचर्या। तो इसके लिए भी हमारा आयुष मंत्रालय काम कर रहा है कि आयुष आहार को हमने प्रमोट किया है कि अच्छा आहार लेने से और दिनचर्या अच्छे रखने से बहुत सारी जो बीपी, शुगर, मानसिक तनाव ये जैसी बीमारी के ऊपर हम नियंत्रित कर सकते हैं, और लोगों का और युवा पीढ़ियों का स्वास्थ्य हम उसके माध्यम से अच्छा और सुरक्षित रख सकते हैं।
0: हम आज डिजिटल दौर में जी रहे हैं और मेडिकल फील्ड में खासतौर पर डिजिटल सेवाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में आयुष की डिजिटल सेवाओं का लाभ लोगों तक कैसे पहुंच रहा है?
1: हमारे आयुष मंत्रालय ने अभी तक आयुष ग्रिड, ई संजीवनी और टेली मेडिसिन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से आज तक 5 करोड़ से अधिक नागरिक को घर बैठे हमने उनको परामर्श दिया है। डिजिटल तकनीक जैसे AI की मदद ने आयुर्वेद को लोकल गांव से ग्लोबल तक बढ़ावा देने का काम हमारा मंत्रालय कर रहा है।
0: बिल्कुल, तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि आने वाला जो हमारा समय है वो कैसे हमारी स्वस्थ जीवन शैली में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है आयुर्वेद इसमें, और कैसे भारत का जो एक निर्माण चल रहा है उसमें आयुर्वेद की कितनी बड़ी भूमिका होने वाली है?
1: तो देखो, आने वाला जो समय है वो सही मायने में उपचार का नहीं है, वो रोकथाम का समय है।
0: जी,
1: दुनिया इलनेस से वेलनेस की ओर मुड़ रही है, और आयुर्वेदिक जीवन शैली रोगों जैसे मधुमेह, मोटापा और तनाव जैसे बचाव का सबसे सशक्त समाधान आयुष में है। स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का मार्ग आयुर्वेद की दिनचर्या और ऋतुचर्या से ही होकर जाता है। पूरी दुनिया भारत के ज्ञान को स्वीकार कर रही है, और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री भी हमारे उसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं।
0: मंत्री जी, बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी के साथ साथ में अपना समय निकाला और इस राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आपने विशेष बातचीत हमारे साथ की, धन्यवाद।
2: भारत के स्वास्थ्य ढांचे में आयुर्वेद पद्धति के महत्व और विश्व स्तर पर आयुर्वेद को मिल रही नई पहचान पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक विशेष रिपोर्ट।
3: भारत की 5000 वर्ष पुरानी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति आज देश की मुख्य धारा की स्वास्थ्य सेवाओं का एक अभिन्न और सशक्त अंग बन चुकी है। वर्तमान में सरकार एक व्यापक रणनीति के अंतर्गत इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान और अनुसंधान से जोड़कर देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रही है। इस दिशा में राष्ट्रीय आयुष मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मिलकर देश के स्वास्थ्य ढांचे का कायाकल्प कर रहे हैं। वर्ष 2014-15 से 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों को आयुष सेवाओं के विस्तार के लिए 6400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में 12,200 से अधिक आयुष आरोग्य मंदिरों की स्थापना की जा चुकी है, जहां लोगों को निवारक और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। इसके साथ ही लगभग 13,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में आयुष डॉक्टरों और

0: निवेश की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। डिजिटल तकनीक और जन सुविधा के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय ई संजीवनी टेलीमेडिसिन मंच के माध्यम से अब तक 50 करोड़ से अधिक मरीज लाभान्वित हो चुके हैं, जहां आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टरों से मुफ्त परामर्श की सुविधा दी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए बीमा नियामक IRDAI के निर्देशों के अनुसार अब आयुष उपचारों को बीमा कवर में शामिल किया गया है। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ समझौता कर कैशलेस इलाज की राह आसान की है। शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने के लिए देश भर में आयुष कॉलेजों, स्नातकोत्तर सीटों और शोध पहलों का विस्तार किया जा रहा है। आयुर्विज्ञान और आयुष स्वास्थ्य जैसी योजनाओं के माध्यम से जड़ी बूटियों की सुरक्षा और प्रभाव पर वैज्ञानिक अध्ययन किए जा रहे हैं। शोध को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनुवादिनी AI प्लेटफॉर्म की मदद से अनुसंधान पत्रों को 13 भारतीय भाषाओं में अनुवादित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आयुर्वेद का प्रभाव बढ़ रहा है। गुजरात के जामनगर में स्थापित विश्व स्वास्थ्य संगठन का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर और विभिन्न देशों के साथ हुए द्विपक्षीय समझौते आयुर्वेद को वैश्विक स्वीकृति दिला रहे हैं। विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा की शुरुआत ने भारत को मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का एक प्रमुख केंद्र बना दिया है। केंद्रीय बजट में आयुष क्षेत्र के लिए किए गए आवंटन और नए संस्थानों की घोषणा से ये स्पष्ट है कि आयुर्वेद परंपरा और आधुनिक विज्ञान के संगम से स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में हमारा देश निरंतर अग्रसर है।
1: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnhdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: जापान का शहर नागोया 20वें एशियन गेम्स की मेजबानी करने के अलावा दो चीजों के लिए मशहूर है। पहले सामुराई, यानी जापान के वो पारंपरिक योद्धा जिनके शौर्य, शक्ति और संघर्ष की कहानियां इतिहास में दर्ज है, और आधुनिक जमाने में नागोया की विश्व प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जहां सटीकता के साथ हर नई तकनीक नई संभावनाओं का रास्ता खोल देती है। शौर्य, संघर्ष, शक्ति, सटीकता और संभावनाएं। आज मंगलवार 22 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में ये पांचों रंग दिखे। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी के मैदान में भारत ने अपनी शक्ति का बखान किया, तो वहीं आज बॉक्सिंग रिंग में भी हमारे मुक्केबाजों ने अपना शौर्य दिखाया। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और सॉफ्ट टेनिस में सफलता और संघर्ष का मिला जुला खेल रहा। स्विमिंग और शूटिंग, जहां सेकंड के कुछ हिस्से और कुछ मिलीमीटर जैसी रेजर थिन मार्जिन्स का सवाल है, वहां भारतीय खिलाड़ियों की सटीकता की परीक्षा हुई। तो एक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, ई स्पोर्ट्स, सेपेक टकरो और वुशु जैसे खेल जो अभी भी भारत में अपनी पहचान तलाश रहे हैं, वहां नई संभावनाओं के द्वार खुले। पूरे दिन का लेखा जोखा ले मैं दर्पणजी क्या आपके समक्ष मौजूद हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत महिला क्रिकेट की, जिसने भारत को दिलाया है एशियन गेम्स 2026 में उसका पहला गोल्ड। हरमनप्रीत कौर की महिला क्रिकेट टीम से सिर्फ पोडियम फिनिश की नहीं, गोल्ड मेडल की ही उम्मीद थी। एनीथिंग लेस वुड हैव बीन एन अपसेट। लेकिन दबदबा बनाने की इस अपेक्षा के साथ उम्मीदों का वजन भी आता है, और उसके साथ आता है दबाव, और कई बार इस दबाव में अच्छे खासे खिलाड़ी बिखर जाते हैं। लेकिन आज शैफाली वर्मा और स्मृति मानधना ने कहा आज नहीं। दोनों की जोड़ी ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। 99 रन की सलामी साझेदारी, जिसने नींव रखी एक विशाल फर्स्ट इनिंग स्कोर की। जहां शेफाली ताबड़तोड़ 48 रन बनाने के बाद आउट हो गई, तो वहीं उपकप्तान मांधना ने अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर आई ऋचा घोष, जिन्होंने 222 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 49 रन बनाए और भारत ने श्रीलंका को 217 का टारगेट दिया। श्रीलंका की पारी शुरुआत में ही लड़खड़ाने लगी। बल्ले से अपने जोहर दिखाने के बाद शेफाली ने गेंद से भी दो विकेट लेने में योगदान दिया। अंततः भारत ने 147 रन के बड़े मार्जिन से इस मुकाबले को एक तरफा अंदाज में जीता।
2: मेंस कबड्डी के ग्रुप ए मुकाबले में इंडिया ने अपने विनिंग मोमेंटम को बरकरार रखते हुए दक्षिण कोरिया को 63-31 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। डिफेंडिंग चैंपियंस ने पूरे मुकाबले में अपनी पकड़ बनाए रखी और ग्रुप ए में अपनी स्थिति मजबूत की। इंडिया ने शुरुआत से ही अटैक और डिफेंस दोनों में दबाव बनाया। हाफ टाइम तक इंडिया 34-14 से आगे था और उसने दो बार प्रतिद्वंदी को ऑल आउट किया। दूसरे हाफ में भी अर्जुन देशवाल, देवांग, अयान, राहुल और पवन कुमार जैसे ने स्कोरिंग जारी रखी, जबकि जयदीप, सुमित और सुनील कुमार ने डिफेंस में इंडिया की पकड़ बनाए रखी। आखिरकार इंडिया ने दूसरे हाफ में 29 पॉइंट जोड़ते हुए मुकाबला 63-31 से अपने नाम किया। पूरे मैच में इंडिया ने 3 ऑल आउट, 17 बोनस पॉइंट और 2 सुपर टैकल पॉइंट्स हासिल किए। दक्षिण कोरिया की तरफ से कैप्टन ली जांगकुन सुपर 10 जरूर दर्ज किया, लेकिन इंडियन टीम की लगातार अटैकिंग और डिफेंसिव प्रेशर के सामने कोरिया वापसी नहीं कर सका। इंडिया ने इस तरह ग्रुप ए में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब इंडियन मेंस टीम का अगला मुकाबला 23 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होगा, जहां टीम जीत की इस लय को आगे बढ़ाने के इरादे से उतरेगी।
1: हॉकी की भी यही कहानी है। वहां गोल्ड मेडल जीतना केवल शक्ति दिखाने और साख के लिए जरूरी नहीं, बल्कि ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ घटा आज हॉकी के मैदान पर, आइए सुनते हैं।
2: मेंस हॉकी में इंडिया ने आज अपने अटैकिंग अंदाज का शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 16-1 से करारी शिकस्त दी। इंडिया की हॉकी टीम से इसी तरह के हैवी परफॉर्मेंस की उम्मीद हमेशा रहती है, और आज मैदान पर टीम ने उसी एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह जस्टिफाई किया। पूल ए में ये इंडिया की लगातार दूसरी जीत है और दो मैचेस में इंडिया अब तक 29 गोल कर चुका है। इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा और हाफ टाइम तक 8-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। दूसरे हाफ में भी अटैकिंग मोमेंटम बरकरार रहा और इंडिया ने कुल 16 गोल दागे। इस शानदार स्कोरिंग परफॉर्मेंस में जुगराज सिंह ने 4 गोल्स किए जबकि अभिषेक और दिलप्रीत सिंह ने भी 3-3 गोल्स के साथ हैट्रिक्स पूरी करी। और इंडिया के डिफेंसिव स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे मुकाबले में श्रीलंका को एक भी पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिला, यानी इंडिया ने सिर्फ गोल्स के सामने नहीं बल्कि अपने डिफेंस में भी श्रीलंका पर लगातार दबाव बनाए रखा। श्रीलंका के लिए सुरेश रत्नायके ने 50वें मिनट में एकमात्र गोल किया जो एशियन गेम्स में इंडिया के खिलाफ श्रीलंका का पहला गोल भी रहा। अब इंडिया का अगला पूल ए मुकाबला 24 सितंबर को दक्षिण कोरिया के खिलाफ होगा।
1: अब चलते हैं बॉक्सिंग रिंग की तरफ जहां आज चुनौती कड़ी थी। हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय मुक्केबाजों से जो उम्मीदें हैं उनका वजन भी बढ़ गया है, लेकिन दबाव में भी दमखम दिखाते हुए इंडियन बॉक्सर्स ने अपना वर्चस्व कायम रखा। सबसे पहले महिलाओं की 51 किलोग्राम की कैटेगरी जहां साक्षी चौधरी के सामने थी पेरिस ओलंपिक्स की मेडलिस्ट फिलीपींस की आयरा विलिगास, लेकिन साक्षी ने तो मानो प्रतिद्वंदी को मौका ही नहीं दिया। शुरुआत से ही बाउट को डोमिनेट किया और अंततः सर्वसम्मति से मुकाबला जीत प्री क्वार्टर्स में अपनी जगह बना ली। नेक्स्ट वॉज जादुमणि सिंह इन द मेन्स 55 किलोग्राम कैटेगरी। He was up against Nepal's Chandra Bahadur Thapa and the

0: same story repeated. Jadumani dominated the fight and eventually was hailed as the better boxer on all five cards. He won his bout by a unanimous decision and made it to the pre-quarterfinals. चलिए अब बात करते हैं नई संभावनाओं की. भारत का एक और मेडल सुनिश्चित हो चुका है वुशु में. वुशु चाइनीज मार्शल आर्ट्स कुंगफू से उत्पन्न हुआ एक खेल है और इसके सांडा इवेंट में दो फाइटर्स आमने सामने होकर एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश करते हैं. भारत की रोशबीना देवी ने इस इवेंट में 2018 में कांस्य पदक और 2023 के एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था. 2026 में भी उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश पा कम से कम ब्रॉन्ज पक्का कर लिया है. हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि सेमीफाइनल जीत वो सिल्वर और हो सके तो गोल्ड पर भी निशाना साधेंगी. इसी इवेंट में पुरुषों की 56 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के आर्यन ने भी उम्मीदें जगाई थी. हालांकि क्वार्टर फाइनल्स में उज्बेकिस्तान के सेडुला अब्दुराशितोव के खिलाफ उनको हार मिली. वुशु में ही एक परफॉर्मेंस इवेंट भी होता है जिसको नानकुआन कहा जाता है. उसमें आज भारत की लांगलिन टोम्बी देवी शिरकत कर रही थी. हालांकि 10 खिलाड़ियों में उन्होंने 8वां स्थान प्राप्त किया और मेडल की रेस से बाहर हो गई. फाइट स्पोर्ट्स की ही बात हो रही है तो जापान में ही उत्पन्न हुआ कराटे कैसे पीछे रह सकता है.
1: जी हाँ, कराटे में इंडिया के लिए आज का दिन मेडल के बेहद करीब पहुंचकर खत्म हुआ. सबसे पहले पुरुष कुमीते 84 किलोग्राम में चेतन भट्ट ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए. चेतन ने पहले सेमीफाइनल में जॉर्डन के मोहम्मद अल जफारी का सामना किया लेकिन 0-8 से हार गए. इस रिजल्ट के बाद उन्हें ब्रॉन्ज मेडल बाउट में जगह मिली. ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चुंग से हुआ. मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने 1-1 यू को स्कोर किया जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा. ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चुंग से हुआ. मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने 1-1 यू को स्कोर किया जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा. लेकिन इसके बाद फैसला सेंशु से हुआ. सेंशु उस एथलीट को मिलता है जिसने ओपोनेंट के स्कोर करने से पहले सबसे पहला अनकंटेस्टेड पॉइंट हासिल किया हो. चुंग ने पहला स्कोर किया था इसलिए टाई होने पर सेंशु के आधार पर उन्हें विनर घोषित किया गया और चेतन ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए. अब महिला कुमीते 55 किलो की कैटेगरी में अलीशा चौधरी को राउंड ऑफ 16 में इंडोनेशिया की चौक एस्त्री सानिस त्रयानी से 1-6 से हार मिली. अलीशा ने 1 यू को स्कोर किया जबकि सानिस त्रयानी ने 3 यू को और 1 इपोन के जरिए 6 पॉइंट्स हासिल किए. अलीशा का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 16 में समाप्त हुआ. इस तरह कराटे में इंडिया के दोनों एथलीट्स मेडल कंटेंशन में पहुंचे लेकिन चेतन भट्ट का बेहद करीबी 1-1 ब्रॉन्ज मेडल बाउट और सेंचु का फैसला आज के मुकाबलों का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा रहा.
0: संघर्ष और सफलता का यह मिला जुला खेल बैडमिंटन कोर्ट पर भी देखने को मिला. क्वार्टर फाइनल में जहां महिलाओं की टीम को हार मिली तो वहीं पुरुषों ने जापान की मजबूत टीम को हरा कर सेमीफाइनल में पहुंच अपने लिए कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है. डिटेल्स बता रही हैं साक्षी मांडवाल.
2: इन बैडमिंटन द इंडियन वुमेन्स टीम कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर अ 1-3 लॉस टू जापान इन द क्वार्टर फाइनल्स. द फर्स्ट मैच वाज प्लेड बिटवीन पीवी सिंधु and Akane Yamaguchi of Japan, where PV Sindhu, despite having won the first game, went on to lose the next two to Akane Yamaguchi. In the next match, Unnati Huda of India lost to Tomoka Miyazaki. The third match was played between Trisa Jolly and Gayatri Gopichand of India, who beat Yuki Fukushima and Mayu Matsumoto of Japan. Yet, this victory was not enough for India to be able to defeat Japan in totality. Because the last match that was played between Tanvi Sharma of India and Nozomi Okuhara of Japan, we saw Tanvi Sharma losing to her Japanese opponent. We now move on towards the men's team event in badminton quarterfinals. The first match in this was played between Lakshya Sen of India, who beat Japan's Kodai Naraoka in a very thrilling 66-minute encounter to give India a 1-0 lead in the men's team quarterfinal tie. This victory thereby set the momentum and pace for the next ex-shuttlers who were to represent India in the second match. Because in that match also we saw India's Chirag Shetty and Satvik Ranki Reddy up against Japan's Hoki Takuro and Kobayashi, whereby they pulled out a brilliant victory from the hands of Japan by defeating them in straight games to win the match 2-0 in favor of India.
0: It was a mixed bag overall in racket sports. In table tennis, the men's team lost to South Korea, while the women defeated Thailand and made it to the quarterfinals. However, there North Korea came in their way.
2: Let's now talk about table tennis. Indian women's table tennis team beat Thailand 3-2 in a hard-fought match at the Asian Games 2026, advancing to the quarterfinals. In a dramatic turnaround in table tennis, India's Srija Akula conceded the final three games after taking a 2-0 lead early on. In the second game, India's Yashaswini Ghorpade win against Suthasini Savitabu to keep India's hopes alive. The Achitale went down in another five-setter, losing to Jinepa Savitabu of Thailand. In the fourth game, Yashaswini Ghorpade defeated Oravan Paranang, and finally Srija Akula won a crucial match against Suthasini, help India secure the overall victory. The final scoreline read 3-2 in favour of India.
0: टीटी और बैडमिंटन के अलावा एक और रैकेट स्पोर्ट एशियन गेम्स का हिस्सा है, जहां पर भारत की पदक की उम्मीदें हैं। हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट टेनिस की।
2: आद्या तिवारी सफर 1-4 डिफीट टू थाईलैंड्स अलीशा जेलगर इन द वुमेन्स सिंगल्स ग्रुप डी मैच। लेटर इन द डे इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जैमीना टुक ऑन अरैन हुसैन इन मेन्स सिंगल्स ग्रुप डी क्लैश, वेयर इंडिया बीट पाकिस्तान। जैमीना सिंपली वाज द बेटर प्लेयर अगेंस्ट पाकिस्तान्स अरैन हुसैन। द इंडियन टुक द मैच अवे फ्रॉम हिम कंप्लीटली, फिनिशिंग द मैच विद अ स्कोर लाइन ऑफ 4-2, 4-0, 4-2, 4-0, thereby completely outplaying his opponent.
0: इसके बाद रुख करते हैं फेंसिंग का।
1: फेंसिंग यानी तलवारबाजी में इंडिया के लिए दिन मिला जुला रहा, लेकिन वुमेन्स ईपी में तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 16 तक पहुंचकर सबसे लंबा सफर तय किया। चारों इंडियन फेंसर्स ने पहले अपने रिस्पेक्टिव पूल बाउट्स के जरिए नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, जिसके बाद राउंड ऑफ 32 से आगे का मुकाबला हुआ। सबसे पहले वुमेन्स ईपी तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 32 में थाईलैंड की नाथपपात सांगनियो को 15-10 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। वहां उनका सामना हुआ साउथ कोरिया की रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट सोम सेरा से। तनिक्षा ने बड़ी चुनौती दी, लेकिन 9-15 से हार कर उनका कैंपेन समाप्त हुआ। यह भी खास है कि तनिक्षा इस साल सीनियर वुमेन्स ईपी में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप्स में गोल्ड जीत चुकी हैं। इसी कैटेगरी में मितवा चौधरी का मुकाबला चाइना की योंग रिंगवेन से बेहद करीबी रहा। मितवा ने तीनों पीरियड्स में फाइट जारी रखी, लेकिन अंत में सिर्फ एक पॉइंट के अंतर से 14-15 से हार गई। अब अगर चले मेंस फॉइल्स स्पर्धा की तरफ, हिमांश सिंह और सचिन दोनों ने पूल स्टेज में 3 जीत और 2 हार के साथ राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई थी। राउंड ऑफ 32 में हिमांश ने कजाकिस्तान के गलीम नूरमूव के खिलाफ पहले पीरियड में 6-5 की बढ़त बनाई, लेकिन नूरमूव ने वापसी करते हुए मुकाबला 15-9 से जीत लिया। वहीं सचिन को कजाकिस्तान के टिमोफी ने भी 15-9 से हराया। इस तरह मेंस फॉइल में दोनों इंडियन फेंसर्स का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 32 में हुआ समाप्त।
0: जहां इन खेलों में मिला जुला रिजल्ट रहा, तो वहीं स्विमिंग और शूटिंग में पदक आते आते रह गया, और बता रहे हैं अभिनव।
3: आर्य नेहरा वॉज इन एक्शन फॉर इंडिया इन दिस स्विमिंग कॉम्पिटिशन इन द मेन्स 1500 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल बी। आर्यन ट्राइड हिज बेस्ट, स्ट्राइव्ड हार्ड, बट अनफॉर्चुनेटली फिनिश्ड फोर्थ एंड केम सो क्लोज इन दैट मेन्स कॉम्पिटिशन। The Indian men's 4x100 meter medley relay team comprised of Utkarsh Patil, Danu Suresh, Benedict Beniston and Akash Mane. The men's team finished 7th and then qualified for the final, and there were huge expectations that they would show some outstanding performances in the pool. However, when it came to the final, the competition was fierce. It was really tough. While the Indian swimmers strived hard, they unfortunately finished last and 8th in the medley relay final. It was really tough competition for India and it was a great experience for them, while China once again took the gold in the swimming pool.
0: फिर शूटिंग में दो सिल्वर मेडल हासिल कर लेने वाली एला वलेन वलारीवन के पास मौका था मिक्स्ड टीम में भी पार्थ माने के साथ पदक पर निशाना साधने का, पर वो चौथे पायदान पर रही।
3: द इंडियन शूटिंग पेयर ऑफ एला वलेन वलारीवन एंड पार्थ माने फिनिश फोर्थ इन द 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम फाइनल एट द एशियन गेम्स 26 in Aichi, Nagoya, Japan. In the qualification round, Vararivan and Parthmane shot a strong combined score of 634 points.

0: 2006, finishing second to qualify for the medal round. However, in the medal round, the duo scored 376.3 in the final, maintaining the fourth position from the opening series and missed out on a podium finish. And as usual, as we have seen in the Asian Games, China won the gold medal with a world record scored in the event. The qualification round score of the Indian athletes was the best Asian Games record. Moving on to the men's and women's skeet competition. Talking about the men's team first, after 100 shots, the Indian men saw contrasting fortunes as the individual qualification rounds progressed. A.S. Naruka is currently in second place with a total of 96 points so far, putting himself in prime position to qualify for the individual finals. Miraj Ahmed Khan is positioned further down the order at 23rd place with a total of 91 points. While Bhavdev Singh Gill is ranked 35th following a tough run of series with a total of 86. Now when we talk about the skeet men's team finals, India stood at the end of day 2 in the 5th position with a total of 273 points. Meanwhile in the women's skeet standings, the Indian women remain in contention for the finals led by a strong push from Raisa Dhillon. Raisa moved up significantly to 5th place in the individual standings with a total of 92 points. Parinaz Dhaliwal was positioned just outside the top tier at 9th place with a total of 89 points, while Maheshwari Chauhan currently sits at 16th place with 85 points. The Indian women's team are in 3rd place with 266 points. A reminder that there are 125 shots in this event and just 25 shots tomorrow will decide the team standing for both India men's and women's.
1: कुछ और खेल भी आज चर्चा का केंद्र रहे, उसके लिए चलते हैं विदुषी की तरफ।
2: आइए अन्य खेलों में सबसे पहले शुरू करते हैं सेपेक टेक रॉ में, जहां इंडिया के लिए आज का मुकाबला टफ रहा। मेंस टीम रीगू के ग्रुप बी में इंडिया को मलेशिया के हाथों 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। चलते हैं इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी में इंडिया के प्रदर्शन के ऊपर, जहां इवेंटिंग टीम कैंपेन आज 7th पोजीशन के साथ खत्म हुआ है। टीम ड्रेसेज में इंडिया ने 112.40 पेनल्टी पॉइंट्स के साथ 7th प्लेस हासिल करा है। टीम जंपिंग में भी इंडिया का कैंपेन एलिमिनेशन के साथ समाप्त हुआ और इस तरह टीम इवेंट में इंडिया मेडल कंटेंशन से बाहर रहा, लेकिन आशीष लिमाय का 6th प्लेस फिनिश आज इंडियन इक्वेस्ट्रियन कंटिंजेंट के लिए सबसे अहम प्रदर्शन रहा। ई स्पोर्ट्स के फुटबॉल में इंडिया का कैंपेन भी खत्म हो गया। चिन्मय साहू और दानियाल शकील पटेल ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 0-0 ड्रॉ खेला, जबकि मंगोलिया के खिलाफ स्केड्यूल्ड मैच में ओपोनेंट के डीएनएस रहने से इंडिया को वॉकओवर मिला। पॉइंट्स बराबर होने के बावजूद टाई ब्रेक में उज्बेकिस्तान आगे निकल गया और इंडिया नॉकआउट स्टेज से बाहर हो गया। मेडल टैली की बात करें तो इंडिया इस समय 8th पोजीशन पर है, जहां उसके खाते में कुल 7 मेडल्स हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। मेडल टैली में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पहले स्थान पर है, जापान दूसरे एंड कोरिया तीसरे स्थान पर है।
1: कल एक बार फिर इसी समय हम पूरे दिन का हालचाल लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। एडिटर स्वाति कपूर और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं दर्पण दिखिया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाली सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।

0: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में लोग 100 दिनों से अधिक समय से इंटरनेट बंद होने की समस्या का सामना कर रहे हैं। इससे बैंकिंग, कारोबार, पढ़ाई और सूचना तक पहुंच प्रभावित हुई है। ग्रीस की वेबसाइट जियोपॉलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 जून से पीओजेके में मोबाइल डेटा और ब्रांडेड सेवाएं बंद हैं। यह स्थिति जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जेकेजेएसी के नेतृत्व में शुरू हुई विरोध प्रदर्शनों के बाद बनी। मानवाधिकार संगठनों ने संचार सेवाएं बहाल करने, स्वतंत्र पत्रकारों को वहां जाने की अनुमति देने और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच की मांग की है। उन्होंने राजनीतिक मांगों का समाधान दबाव के बजाय बातचीत के जरिए करने की भी अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने आज महासभा में विश्व नेताओं के अपने अंतिम संबोधन में परस्पर निर्भरता पर आधारित विश्व की वकालत की। संयुक्त राष्ट्र के नेता लंबे समय से नेताओं से आग्रह करते रहे हैं कि वे बढ़ती वैश्विक चुनौतियों और महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद सहयोग और साझा निर्णय लेने की प्रक्रिया को न छोड़ें। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अपराजिता नायर। President Draupadi Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony held at Ekta Nagar in Gujarat today. Addressing the film fraternity, President